0: Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
1: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
2: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
1: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
2: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
3: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी आईएसडी अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कॉम्पिटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
4: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
5: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
4: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
5: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download The Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, हर बाई सुपर हिट।
6: शक्ति, संस्कृति और समर्पण की एक यादगार शाम आपका इंतजार कर रही है। इस सैटरडे 11 जुलाई शाम 7 से 9 बजे अपने पूरे परिवार के साथ आइए कृष्णा हेरिटेज सेंटर शंख स्थापना महोत्सव में। एक भव्य 11 एकड़ कैंपस की शुरुआत का जश्न मनाइए, जहां बनेगा कृष्ण टेम्पल, गौशाला, फ्री स्कूल, इवेंट्स हॉल और रेस्टोरेंट। शाम को और भी खास बनाएंगे, गौ पूजा, नरसिम्हा यज्ञ चैंटिंग, किड्स मेला, भजन क्लबिंग और सबके लिए फ्री डिनर फीस्ट। माइनस पार्क ऑपोजिट कृष्णा हेरिटेज सेंटर, 7082 कंट्री रोड।

थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. सीरियसली आई जस्ट लव द डे फ्राइडे. सैटरडे फिर भी नज़दीक हो जाता है टुवर्ड्स मंडे, बट फ्राइडे फील्स द बेस्ट. एंड उसके ऊपर से मैं आ जाती हूँ यहाँ पर तो फीलिंग और भी बढ़ जाती है. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू फन एशिया रेडियो. वैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था रणवीर सिंह का जन्मदिन मनाते हुए अबाउट वॉट हिज what did he graduate in, Ranveer Singh? Acting, fashion designing या telecommunication? फोन उठाइए, नंबर दबाइए, आपको एक गिव अवे मिल सकता है. इसके चलते वो मैं आपको बताऊंगी कौन सा गिव अवे है. पर गाना जो हम सुन रहे थे मल्हारी, एंड दैट वॉज द काइंड ऑफ सॉन्ग दैट मेक्स इवन एन ऑर्डिनरी वॉक टू द किचन फील लाइक अ रॉयल विक्ट्री प्रोसेशन. टाटाना पूरा मल्हारी जो एकदम रॉयल वॉक था. और पता है फैमिली कनेक्शन एक है जो आपको शायद नहीं पता होगा. रणवीर की जो पटर्नल ग्रैंडमदर नानी चांद बुरके, शी वॉज एन एक्टर हु वर्कड इन हिंदी एंड पंजाबी सिनेमा. शी अपीयर्ड इन राज कपूर्स बूट पॉलिश एंड वॉज ऑल्सो नोन एज द डांसिंग लिली ऑफ पंजाब. हाँ, आप जो उस ज़माने के हैं जो ये फिल्में देखा करते थे ऑन अ रेगुलर रिपीट और आज भी देखे हैं, डांसिंग लिली ऑफ पंजाब, या शी वॉज रणवीर सिंह्स पटर्नल ग्रैंड मदर. और जो भवनानी फैमिली की कनेक्शन रही है विद परफॉर्मेंस दैट बिगैन वेल बिफोर रणवीर डेब्यू इन 2010 इन बैंड बाजा बारात. और हीरोइक बाजीराव का जो कैरेक्टर था कंप्लीट ऑपोजिट टू द रणवीर एज अलाउद्दीन खिलजी इन पद्मावत. एंड द सॉन्ग for you.

0: tracks that put you on the right track.
1: So, 101.9 FM, Fun Asia Radio. So, yes, I had asked you about a question ki ye Ranveer Singh jo hain, wo unhone kya graduation kis mein kiya tha? And yes, I got the answer. So, main aapko answer batati hu. But mere question the, acting mein kiya tha, fashion designing mein kiya tha, ya phir telecommunication mein kiya tha. The answer is telecommunication. And Shruti ka hai, jo mere saath hain, unhone mujhe sahi jawab diya. कि रणवीर ने ग्रेजुएट किया था फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी इन 2008 और पता है ये जो यूनिवर्सिटी है वो बाद में रणवीर को इंक्लूड कर ली थी अंडर 20 की 40 ग्रुप ऑफ नोटेबल एलुमनाय मतलब ही वाज अंडर 20 लेकिन 40 ग्रुप ऑफ नोटेबल एलुमनाय में 40 लोगों को जो चूज किया गया था अंडर 20 में दैट वाज रणवीर सिंह सो उनका उनकी शोहरत ना आई फील फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम थी एंड द डिग्री मे हैव बीन टेक्निकल बट द डेस्टिनी वॉज क्लियरली थिएट्रिकल और ये जो गाना स्वैग से भरा हुआ था जो खली बली आपने देखा इट वॉज अ प्रूफ दैट ही कुड एक्चुअली ये जो विलन की एंट्री थी वो डांस करते हुए एंटर कर रहे हैं और वो रणवीर सिंह ही कर सकते हैं और उन्हीं पर जज सकता है और वो कॉस्ट्यूम के साथ डांसिंग अवे एज अ यू नो एज खली बली जो गाना था इन पद्मावत अ विलन वो एंटर कर रहे हैं ऐसे डांस के साथ ही जस्टिफाइड इट और गली बॉय जो था ना रणवीर के उन्होंने उसमें रैप किया था 2011 में आदत से मजबूर लेडीज वर्सेस विक्की भेल में भी उन्होंने ही गाना अपनी आवाज़ दी थी ये बहुत लोगों ने नहीं पता आपको शायद आई डोंट नो बिकॉज आदत से मजबूर वॉज हिज फर्स्ट लेडी वर्सेस विक्की भेल और मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये वाला गाना फ्रॉम गली बॉय जो उन्होंने अपने ही आवाज में हमारे लिए गाया था
2: जितने भी चीरफाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक सबके सब भूखे फक्कड़ बीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले फिर जाके कुछ उखाड़े बस ये तो तेरे अंदर की सच्ची कहानी तेरे अंदर का लाभ फटके भाग

सच अ वर्सेटाइल एक्टर. गली बॉय में उन्हें हमने देखा. रणवीर सिंह को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका 41st बर्थडे जो अभी अभी हाल ही में गया. एंड सेलिब्रेटिंग हिम अभी अभी मुझसे जीत कर श्रुतिका लेके जा रही हैं मिराज लाउंज की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर. डैलस, वी आर लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट फेवरेट हैंग आउट. इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस मिराज लाउंज. अब वहाँ इंजॉय कर सकते हैं प्रीमियम हुक्का, डिलीशियस बाइट्स, हैंड क्राफ्टेड कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक एंड एक्साइटिंग डीजे नाइट्स ऑल अंडर वन रूफ. और सबसे अच्छी बात है कि हैप्पी आर रन फ्रॉम मंडे थ्रू थर्सडे फ्रॉम 11 AM टू 6 PM. आप जाके हैप्पी आर इंजॉय कर सकते हैं फीचरिंग हुक्का स्टार्टिंग जस्ट एट $24.99. शॉर्ट्स फॉर ओनली $4.99. प्लस डोंट मिस द फन विद लेडीज नाइट एंड कॉलेज नाइट. दे कीप डूइंग एंड होस्टिंग इवेंट्स लाइक दैट. आप विजिट कर सकते हैं मिराज लाउंज ऑन मकीनी रैंच पार्कवे बिकॉज मिरेकल्स हैपन एट मिराज दे से. और अभी अभी श्रुतिका ने जीत लिया. बताया उन्होंने मास कम्युनिकेशन में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था बैचलर्स ऑफ आर्ट्स. एंड अपना टाइम आएगा जो अभी अभी गाना आपने सुना टोटली इन दी वॉइस यू कुड रिकग्नाइज दी वॉइस ऑफ रणवीर सिंह. और ये पहला गाना नहीं है ही आदत से मजबूर फ्रॉम लेडी वर्सेस विकी बहल भी इन्होंने गाया था. ये जो राइम डॉक्टर इनको नाम दिया गया था बिकॉज ही वॉज अ कॉपी राइटर एड फर्म में और उन्हें राइम डॉक्टर बोला गया था. और ये जो राइम डॉक्टर है ना गली बॉय के बाद रिटायर नहीं हुए. वहाँ पर तो अपना राइम आएगा डायडा यू नो दिस इज राइमिंग. वॉट झुमका तो गाना याद है ना रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. मेन वोकल्स आपको इसमें अरिजीत सिंह के सुनाए देंगे और जोनिता गांधी की फीमेल वॉइस. पर जो रैप सेक्शन है ना उस पर ध्यान दीजिएगा. कौन है? ऑफ कोर्स यू गेट नो ब्राउनी पॉइंट्स फॉर गेसिंग. किसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? इतना बड़ा सीक्रेट मैं कैसे बता दूं?

वाह झुमका, वो रैप सुना आपने रणवीर सिंह? वाओ मैन, सुपर, टोटली। अगर इनको नाम दिया जाना तो इनको हम कह सकते हैं, इनके खाली दो मोड्स है, सेटिंग जो होती है ना किसी की, इनकी दो ही सेटिंग है, एक है फुल पावर सेटिंग और एक है इवन मोर पावर सेटिंग। पावर ही पावर है। 41st बर्थडे जना इनका सेलिब्रेट किया जा रहा था, फ्रॉम एवे टू व्हाट झुमका वी हर्ड ऑल दी सॉन्ग। रणवीर सिंह फिल्म म्यूजिक हैज टेकन अस थ्रू वेडिंग्स, वॉर, रोमांस, विलन्स, हिप हॉप, फुल ऑन बॉलीवुड सेलिब्रेशंस। तो दिस वॉज एक्चुअली अ फुल पावर रणवीर एट 41 ऑन 104.9 FM विद आरजे नवनीता। कीप द म्यूजिक प्लेइंग एन एनर्जी हाई ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन। पर रणवीर सिंह को आज हमने सेलिब्रेट किया, बट रणवीर सिंह की एक और बहुत ही ब्यूटिफुल साइड है, उनकी इमोशनल साइड। ऑल्सो मैरिड दीपिका पादुकोण, हु वी नो हैज़ अ वेरी इमोशनल साइड एंड दे कनेक्टेड। अपना टाइम आएगा, झुमका, ये सारे सेगमेंट तो है, बट देर इज़ अ रोमांटिक ब्रीदर हियर फॉर यू। रणवीर साउंड ट्रैक्स हैज़ हाई एनर्जी, बट दिस इज़ द सॉफ्ट साइड ऑफ हिम, वेर वी सॉ द रफ साइड इन धुरंधर, बट दिस म्यूजिक जस्ट एंड्स इट विथ हिज सॉफ्ट साइड।

हैप्पी बर्थडे टू रणवीर सिंह, 41 इयर्स के हो गए हैं. टोटली अ पावर पैक्ड पर्सन विद सो मेनी फैसेट्स, नाइस, अ ग्रेट सिंगर, आई वुड से फैशन आइकॉन उन्हें कहा जा सकता है. यू नो, ग्रेट ग्रेट एक्टर. धुरंधर के बाद तो ही इज जस्ट फ्लाइंग हाई विथ वॉट एवर ही हैज टेकन. रियली वर्कड हिज वे अप, लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेफिनेटली ब्राइट करियर विच वी विल इंजॉय वॉचिंग. आप किसी का जन्मदिन है हो तो फ़ोन उठाएगा, नंबर दबाएगा, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. और अगर जूल्स की पहचान है, जूल्स की चाहत है और जूल्स के लिए पीएमजे जूल्स का वेट था, तो वो भी अब वेट ओवर है क्योंकि वो अब आ चुके हैं फ्रिस्को में एंड दे ब्रिंग ओवर 60 इयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस और टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप. आप उनके स्टोर में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टनिंग गोल्ड डायमंड्स एंड ब्राइडल गोल्ड डायमंड्स नहीं होते, गोल्ड होता है और डायमंड्स होता है, मतलब गोल्ड डायमंड्स, गोल्ड में डायमंड लगा सकते हैं बट गोल्ड होता है, डायमंड्स होता है और ब्राइडल कलेक्शंस भी होते हैं फॉर एवरी सेलिब्रेशन और कोई भी माइलस्टोन हो उसके लिए. दे आर प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा घटमनेनी. पीएमजे इज अ नेम ट्रस्टेड बाय जनरेशंस. आप विजिट कीजिए पीएमजे ज्वेल्स फ्रिस्को या और मेन स्ट्रीट पर एंड डिस्कवर Jewelry that tells you story. सफ़ी, अगर आप सुन रहे हैं फर्नीचर रेडियो, आपकी चाहत, आपकी पसंद, यार ये अभी बहुत ज़रूरी है. गर्मी में निकले, इतना हीट है, मैं तो इसके बगैर निकल ही नहीं सकती. ये एक्सेसरी, चश्मा,

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ अगस्त, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा मैं हीरो।
7: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
8: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
7: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
9: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
10: Excuse me. It's called being loyal.
9: It's called being predictable.
10: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
9: And what's so special at Neon Cactus?
10: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
9: Not bad.
10: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
9: Okay, this I didn't expect from you.
10: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
11: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
12: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
13: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies night and college nights bhi.
2: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Ajji, sunte ho? Soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
18: India mein? To yahan jo friends aur relatives hain, wo kaise attend karenge?
17: Par यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
0: वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फनीजा रेडियो पर। अजीब मुकाम पर ठहरा हुआ है काफिला जिंदगी का, किसी ने कहा अजीब मुकाम पर ठहरा हुआ है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने चले थे, नींद ही गवा बैठे। वैसे इसलिए आज डॉक्टर वेन्यू को हम लाए थे, जो बता रहे थे कि नींद अगर आपको नहीं आ रही हो तो उसका सलूशन क्या है। सफ़ी, आपका गाना।

काला चश्मा 104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे दोस्तों। आपको पता है कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप इन्वॉल्व हो गए हो कार या ट्रक एक्सीडेंट में या फिर स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट में। ख्याल रखिए आपकी ये सेहत की, इफ़ यू हैव गॉट हर्ट द ट्रीटमेंट की, और टेंशन की कैसे पैसे आएंगे क्या होगा वो अटर्नी उमर ख्वाजा पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो हैं यही केसेस हैंडल करते हैं। दे फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिज़र्व, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डीलिंग करना एक्चुअली स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो आपको चाहिए कोई अटर्नी जो आपको समझे और मेक श्योर करे कि आपको कॉम्पनसेशन मिले, आपकी परेशानी आपके यू नो ट्रीटमेंट के लिए हो लेकिन पैसों के लिए नहीं हो। सो यू डोंट पे अंटिल यू विन। आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए 4693005046। इसे अपने डायल और फेवरेट्स में नोट ज़रूर कर लीजिए। आई वुड सजेस्ट, आई हैव माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विद दिस, बट डू पुट दैट नंबर इन योर फोन नंबर 4693005046, एंड यू कैन ऑल्सो विजिट attorneyomar.com, but they are there to help you and help you.

0: बाल जिगी जिगी सोनू के चीटू की स्वीटी से लिया गया 104.9 FM फनी जॉय रेडियो पर ये वाला गाना।
1: कर हिंदी हिंदी बोल,
2: कर हिंदी हिंदी बोल, कर हिंदी हिंदी बोल।
0: शुरू होता है ये वाला गेम शो 104.9 FM फनी जॉय रेडियो पर फॉर वन गिव अवे व्हिच आई हैव टुडे फ्रॉम द मिराज लाउंज। जो फोन उठाए नंबर दबाइए 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। वैसे तो परीक्षा है, फोन करते हैं आप एग्जाम देने के लिए कि कितनी हिंदी जानते हो और कितनी भूल गए हैं, तो करना क्या है, फोन उठाना है, नंबर दबाना है 9722355555 स्टूडियो का नंबर।

0: कर गई चुल।
1: सुपर, हियर वी हैड आलिया भट्ट, दिस लड़की वेरी चुल, एब्सोल्युटली बुलबुल। सुन रहे हैं 104.9 एफएम फर्नीचर रेडियो। मेरे साथ मेरे एक लिसनर है, चलिए लेती हूँ मैं उन्हें ऑन एयर। गुड इवनिंग फर्नीचर रेडियो, रजत साहब आपका बहुत बहुत स्वागत ऑन फर्नीचर रेडियो।
2: थैंक यू।
1: सो आपने अभी अभी कोई चैलेंज सुना और आप बस ट्रेन में चढ़ गए बिना जाने कि वो ट्रेन जा कहाँ रही है।
2: जी मैम बिल्कुल, हाँ जी।
1: सो ये एक चैलेंज है कि आपको सिर्फ हिंदी और हिंदी में बोलना है और नॉट अलाउड इज अंग्रेजी, बस हमारे भाषा में घुस गई है और एकदम कंफर्टेबल हो लिए हम उन्हें चुन चुन के निकाल रहे हैं वो शब्दों को।
2: अच्छा ठीक है।
1: सो यू विल नॉट टॉक इन हिंदी, नॉट टॉक इन इंग्लिश, हिंदी इज अलाउड, ऑफ कोर्स उर्दू इज ऑल्सो अलाउड, भाई बहन है भाषा में, सो दैट वे। चलिए तो आपका वक्त शुरू किया जाए।
2: बिल्कुल।
1: सो रजत, आप फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं?
2: हाँ जी पहली बार।
1: तो आपने कभी हिंदी नहीं सुना है?
2: नहीं मैंने सुना नहीं है, ये पहली बार है बिल्कुल। मैं जैसे ड्राइव कर रहा था और आपका मैंने सुना और मैंने कॉल
1: कर लिया, ड्राइव कर रहा था। ये सब हिंदी है कि इंग्लिश?
2: ये मैम इंग्लिश है। हाँ जी, सॉरी याद आया।
1: तो ड्राइव भी इंग्लिश था और कॉल भी इंग्लिश है, बट फिर भी मैं आपको बिरावंश लाउंज की तरफ से आपको एक गिव अवे दे रही हूँ, विच इज यू कैन गो एंजॉय योर डिनर देयर, $50 का डिनर फॉर 30, $20 ऑफ है। ओके, यू डोंट गो एनीवेयर।
2: थैंक यू सो मच।
1: आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन एंड आई विल गिव यू दिस एनीवेज, जस्ट टू बी पार्ट ऑफ इट एंड फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने के लिए। सुपर,
3: क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न।

0: थाम के बैठी है क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
2: अब भी वक्त है, निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
1: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
2: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
1: बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

सब मूवी ये जवानी है दीवानी एंड द सॉन्ग दिस वाज एन आइटम नंबर जहाँ पर ये पूरे दुनिया घूम रहे होते हैं रणबीर कपूर एंड वहाँ पर मिल जाती हैं उन्हें घाघरे वाली नन अदर देन आवर माधुरी दीक्षित. बट सुपर डुपर दिस फिल्म यू नो ये जवानी है दीवानी इज अनदर वन फिल्म जो आप कभी भी ऐसे ही मूड हो रहा हो एक कोई अच्छी फिल्म फील गुड देने का फैक्टर हो जिस फिल्म में जस्ट सिट एंड वॉच ये जवानी है दीवानी. यू विल इंजॉय यू विल लाफ यू विल फील लव यू विल फील नाइस. दैट्स ये जवानी है दीवानी. सुन रहे 104.9 FM फनी जा रेडियो. और इस वीकेंड आप यहाँ तो जा ही रहे होंगे. नहीं जा रहे हो तो क्या कर रहे हो? ओ माई गॉड विशाल शेखर ऑलरेडी हियर इन टाउन डैलस. आप बॉलीवुड फैंस जो इतने सारे गाने सुनते हैं उनके प्लेलिस्ट से हर समय वो लाइव प्लेलिस्ट आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं. विशाल शेखर द डुओ बिहाइंड सम ऑफ द बॉलीवुड बिगेस्ट सुपर हिट्स एंड दे आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर टू डैलस. और ये हो रहा है इसी संडे जुलाई 12 को एट द कर्टिस कलवेल सेंटर इन गार्लिन. टिकट्स आर ऑन सेल नाउ एट कैश पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम. और आप फनीजा कोड यूज़ करते हैं तो 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है आपको. और येस दैट इज आवर वेरी ओन विशाल एंड शेखर इन टाउन. Right and very right.

0: But that one, that's the time to say ciao, bye-bye, bye-bye for the entire week. I hope you had a lovely, lovely time on 5 to 8, my show, Pansa Straight from the Heart Hit Hai Toh. Bajega to sare gaane. Today was total hit on this. Thank God it's Friday show. So keep thanking Friday because of Friday hai Saturday Sunday. Pura weekend aapke liye hai. Jaate jaate pata hai mera khayal ye hai ki hame na hamesha connected to rehna hi chahiye. Kyunki life is like to maintain your relationship in life is like the needle of a clock. No matter if one is fast and the other is slow, ऐसा होता है जिंदगी में आप दो जन हैं तो एक कोई fast है एक कोई slow है. The matter is to stay connected. That is important. Connection, believe me, is life. Believe me, it's happiness. Believe me, it's worth living for. With that thought, good night, sleep tight, get up happy, fresh and bright, wishing you a flowerful morning, a colorful noon, a joyful evening, and a peaceful night. And I know it's going to be a fabulous day for you tomorrow when you started with a cup of positivity. Wo chai jo bas positivity hi attract karegi, kyunki you need positivity for an awesome life. Take care, milti hoon agle hafte, Paan Se Aaj Straight from the Heart on, thank God, it's Friday.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
10: Calculating route, rerouting.
9: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
10: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
9: क्यों?
10: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
9: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
11: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
10: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
12: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
9: हाँ।
12: घर रिलोकेट करनी है?
9: हाँ।
12: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
9: हाँ भाई हाँ।
12: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
13: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
14: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
15: इट्स लॉसन।
14: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
15: इट्स लॉसन।
14: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
16: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
17: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
18: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
19: जिंदगी एक रंगमंच है
20: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल। हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
21: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com। The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
22: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

लटीना चिकनी चमेली कट कटरीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद हैं।

0: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship and access to top-rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
2: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
3: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
4: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
3: कैसे?
4: पेज 3 ईटरी?
3: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
4: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
3: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
5: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
6: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy।
7: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn।
8: समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर।
7: Call now 945-527-0897 और विजिट astrologerishwar.com।
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
11: लिया।
10: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
11: नहीं आया।
10: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772। That's 972-863-772।
12: विजिट www.sanadainc.com today।

0: कभी सोचा है हमेशा जैक के साथ जिल ही क्यों जाती है हिल पे? जैक के साथ जॉनी भी तो जा सकता है।
1: इट्स अ यूनिसेक्स सॉन्ग।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At ShopCompareInsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
3: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's ShopCompareInsure.com, your 360 insurance solution.
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
6: यू आर अर्निंग वेल, बट आर यू पेइंग मोर टैक्स than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
7: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
10: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स में वेरी।
11: माय टाइम इक्विरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequity.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे। Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
12: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
1: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
2: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
1: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
3: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Zindagi ek safar hai suhana. यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़र वे, सुइट 205, फ्रिस्को।
8: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
9: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Fun Asia
3: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो।
4: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगा एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
6: इतना सब और प्राइस
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगा एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
7: Still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Panacea
2: Hi this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station Panacea Radio

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
2: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
4: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Fanasia.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
4: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

0: काफी हो।
1: मुझसे तो लड़ ले बेटा, दुनिया से कैसे लड़ोगे?
2: आप ही दुनिया हो
0: मेरे लिए, तुम काफी हो।
3: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
4: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।

सही है। पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: tracks that put you on the right track.
1: Banjo.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
5: Beta, 95% aaye?
6: Haan, mummy.
5: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
7: Mera?
5: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated?
7: वो
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी

0: दिल कर चू चै चू चै चै के दिल कर चू चै चू चै चै
1: हैप्पी म्यूजिक हैप्पी पीपल ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: हर घूट में स्वैग है, हर घूट में स्वैग है, हर घूट में स्वैग है, हर घूट में स्वैग है।
1: शुपोए बादशाह
0: बिन टायर है फ्लाई बॉय, ये हम लाइफ पे हाई बॉय, ये तू रख तेरी राय बॉय।

0: अरे घूटो में सोया गया है। अरे घूटो में सोया गया है। अरे घूटो में सोया गया है। अरे घूटो में सोया गया है।
1: अभी भी एक घूंट बाकी है।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: काटेगा और एक ही दिन में हम सबको खत्म कर देगा।
1: बदराम वाट लगने रे पोरा जी।

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: फिर नजरें मिलाती हूँ।

0: और मैं फूल फेंक रहा हूं।
1: तुम?
0: अरे और फिर तुम जाने लगती हो और मजाक कर रहा था ना बिल्ली।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
9: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, phir pooja ka saman, gifts bhi khareedne aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
10: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
9: Kahan?
11: Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, pooja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at DY, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
12: Foodistan in Aubrey. Everything Desi. One place, one vibe.
13: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
14: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
13: नहीं।
14: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
13: नहीं।
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
13: वो भी नहीं।
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
15: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax. Your growth, our strategy.
16: AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
17: Shakti, Sanskriti aur Samarpan ki ek yaadgar sham aapka intezar kar rahi hai. Is Saturday 11 July sham 7 se 9 baje apne poore parivar ke saath aaiye Krishna Heritage Center Shankasthapna Mahotsav mein. Ek bhavya 11 acre campus ki shuruaat ka jashn manaiye jahan banega Krishna Temple, Goshala, Free School, Events Hall aur Restaurant. Sham ko aur bhi khas banayenge. Go Puja, Narsimha Yagna Chanting, Kids Mela, Bhajan Clubbing aur sab ke liye free dinner fee. Myers Park opposite Krishna Heritage Center, 7082 Country Road.
18: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
19: Call the SBA Loan Experts.
18: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
19: Call the SBA Loan Experts.
18: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
19: Call the SBA Loan Experts.
18: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
20: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
21: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
22: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
23: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
22: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।

0: डाक टिकट जारी होगी।
1: स्प्रेडिंग लव एंड अंडरस्टैंडिंग विद बेस्ट म्यूजिक 104.9 FM।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
3: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
4: आने वाले खाने में डोसा।
2: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
5: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
2: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
6: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897 और विजिट
7: एस्ट्रोलॉजर। Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
8: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
7: कैसे?
8: पेज 3 ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
8: Dude, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
9: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में? सब संभाल लेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: happy people, only on Fun Asia Radio.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
8: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
9: Tarikh par tarikh.
10: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
8: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
11: Is sheher ko hua kya? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
10: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401. Plano, McKinney, Irving और Garland में उपलब्ध।
13: Astrology readings are for guidance only and results may vary.
14: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers. So you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
15: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
16: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
17: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
17: वेट, इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
18: मैं हीरो।
19: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
20: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे। The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
21: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets.

सुप्रभात दोस्तों, सुस्वागत है माफी के कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता, आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। उम्मीद कर रही हूं कि आपका ये वीकेंड सुखद जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। और अब जुड़े हैं आप मेरे साथ ऑन दिस म्यूजिकल जर्नी ऑल द वे अंटिल 10 AM। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और साथ में आ चुकी है गर्मियों का मौसम। बहुत ही गर्मी हो चुकी है। इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू बी आउटसाइड फॉर मोर देन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। बहुत गर्म हो रहा है एंड इट विल गेट हॉटर एंड राइट नाउ यू ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट हाउ डू यू कूल डाउन। सो आज ले आई हूँ आपके लिए इस कार्यक्रम में कुछ गाने दैट माइट हेल्प यू कूल डाउन। द शो इज कॉल्ड समर कूल। कुछ गाने जिनमें होंगे या तो कोई बारिशों की बातें या कोई नदियां किनारों की बातें। कुछ बीचेस पे फिल्माए गए गाने सुनेंगे हम, कुछ बोट राइड का मजा लेंगे, साथ साथ कुछ सागर की बातें होंगी एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी स्विमिंग पूल। बट वी गोना कूल डाउन स्पेशली इन दिस सेगमेंट विद सम वेरी नाइस ब्यूटीफुल मेलोडीज, कुछ मध्यम से प्यारे से खूबसूरत से गीत आप ही के लिए।

सोचो कि झीलों के शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो, हम जो देखे सपने प्यारे, सच हो सारे, बस और क्या। और इस सपने को साकार करने के लिए मैं एक नाम बता रही हूँ आपको अभी, और वो नाम है ड्रीम होम मॉर्गेज। उन्होंने बहुत ही सारे लोगों के इस सपनों को पूरा करके दिया है, और ये करते आ रहे हैं 1998 से, और ये बहुत ही शहरों में हेल्प कर सकते हैं। दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड द एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस टेलर टू योर नीड्स। Now, your needs might be for either buying your first home or for upgrading or simply for refinancing. To naam yaad rakhega, Dream Home Mortgage. And want to tell you, you can speak to them at 972-245-5626 and start your home ownership journey with confidence with them today. You could also visit the website, which is dreamhomemortgage.com. Get all the information you're looking for. And then make the call at 972-245-5626. Dream Home Mortgage, making dream homes happen. How's that? आगे बढ़ते हुए अगले गीत की ओर, सभी गीतों में Body of Water है आज शामिल। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। घाट का पानी reminds me of Lonavala and Khandala Ghats. People from Bombay, Mumbai, anybody out there want to share a little something about Khandala, Lonavala Ghats, give me a call. Let me know at 972-235-5555. Pyara Sagit with Shahid Kapoor.

The show is called Summer Cool, thinking about cooler times, yani ki songs jisme there is water in the background. And that means aap sunenge aaj aise gaane jinme shamil honge kuch bahut hi well known rain sequences, kuch beach wale locations pe gaane banaye hue aur kuch vacation destinations wale gaane. Now with that and said, you need to call me if you have a song in mind that fits our theme, Summer Cool, songs that have some water body in the background. Let me know at 972-235-5555. और अब आपको मैं ले चलूंगी इस की ओर. ये बताना है आपको कि वीकेंड आ चुका है. यू आर टेकिंग दिस टाइम टू थिंक अबाउट सम फाइनेंसेस कि क्या करने हैं, पैसे हैं, क्या करना है. पर थोड़ा आप थोड़ा कंफ्यूज हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर सम फाइनेंशियल गाइडेंस. Well, I want to tell you that My Time Equity, led by CPA Sudhir Pai, they offer portfolio management. Iske alawa, they also offer real estate management. They give you guidance about real estate as well as alternative investments. For that, definitely visit mytimeequity.com, or if you'd like to speak to Sudhir Pai, definitely call 469-702-1272. One more time, phone number 469-702-1272. Ye number CPA Sudhir Pai ke liye hai, jo aapko madad karenge to get you to where you want to be in terms of your portfolio management, real estate and other investments. Gaane jin mein honge barish, nadia, ocean, समुंदर यानी कि बीच, बोट, स्विमिंग पूल, वाटरफॉल्स एंड आइलैंड्स. एनी सॉन्ग दैट फिट्स द मूड विद दिस थीम, गिव मी अ कॉल, शेयर विद मी. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. ये कहती हैं, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई. 1992 की फिल्म थी ये, विश्वात्मा.

0: मोर सॉन्ग्स आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. कुछ गाने जिनमें दिस बॉडी ऑफ वाटर विजिबल नदिया किनारे इस
1: माई टाइम इक्विरी अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस फाइनेंशियल प्लानिंग एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टैक्स प्लानिंग रियल इस्टेट हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequity.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे. टॉक टू सुधीर पाई अबाउट 2025 डिजिटल एसेट और क्रिप्टो.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 of duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
4: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower or relaxing spa आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चकचाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
7: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
7: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
7: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
7: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
13: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
12: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
15: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
16: बेटा, 95% आए?
17: हाँ मम्मी.
16: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
14: मेरा?
16: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
14: वो
18: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी.

वेलकम बैक टू म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ हैं आज ऐसे तराने जो कि जुड़े हुए हैं विद सम बॉडी ऑफ वाटर। समर कूल इज द नेम ऑफ द शो दिस मॉर्निंग। फीलिंग वांट टू फील कूल लिटिल बिट यू नो एरी एंड दैट हैपेंस व्हेन यू आर अराउंड ए बॉडी ऑफ वाटर। तो यानी कि कुछ रेन सॉन्ग्स, कुछ बीच वेकेशंस, कुछ क्रूजेस और कुछ एक्सोटिक डेस्टिनेशंस वाले गाने सुनेंगे हम इस सेगमेंट में। इंक्लूडिंग दिस वन दैट्स गोइंग टू कम प्रीटी सून। फर्स्ट सॉन्ग फर्स्ट इज टिप टिप बरसा पानी। आपको याद होगी ये गाना बहुत ही मशहूर हुआ था फिल्म मोहरा का गाना टिप टिप बरसा पानी।

आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि बॉलीवुड में काफी सारे गाने ऐसे होते हैं जिसमें वाटर इन द बैकग्राउंड होता है. एनी रीजन व्हाई दैट इज सो? व्हाई डज बॉलीवुड फील दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव वाटर इन द बैकग्राउंड? यानी कि कुछ बीच वाले सीन्स होते हैं या रेन सीक्वेंसेस होते हैं या ऐसे समथिंग्स बाय द ओशन एंड यू नो इट गोज ऑन. सो बॉडी ऑफ वाटर का क्या महत्व है बॉलीवुड में, बताएंगे आप मुझे 972-235-5555 पे.

0: और अब वक्त होता है हमारे प्रायोजक की ओर से आपके लिए एक संदेश देने का. पहले तो ये कहूंगी थैंक यू टू एजी फिनटेक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस पार्ट ऑफ आवर शो. एजी फिनटेक्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US. ये ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एज वेल एज बिजनेसेस. और इनके बारे में कहूं तो ये बोलूंगी फॉर श्योर दे आर ट्रस्टेड, दे आर एफिशिएंट एंड दे गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. तो आप इन्हें कॉल कीजिएगा. इनका नंबर है 4699429888. यू कुड ऑल्सो विजिट देयर वेबसाइट विच इज agfintax.com.
1: डालस की धड़कन 104.9 FM. Phoenicia Radio.
0: तो समर कूल बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज होती हैं जो बहुत ही लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. इट नॉट ओनली कूल्स देम ऑफ बट ऑल्सो गिव्स देम अ चांस टू एंगेज इन समथिंग फन, जैसे कि स्विमिंग हो गया, फिशिंग, पैडल बोटिंग, पैरासेलिंग, कायाकिंग, विजिटिंग द बीच, शार्क केज डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग एंड मोर. एनी वाटर एक्टिविटीज दैट कम टू योर माइंड दैट यू वुड कॉल एज योर फेवरेट, कॉल मी एंड शेयर विथ मी एट 972-235-5555.

0: बहुत ही प्यारा गाना ऑन द बोट ऑन क्राबी आइलैंड इन थाईलैंड. वेल विल बी बैक विद सम मोर ट्रैक्स विद वाटर.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास. साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास. पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन.
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax.
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा.
2: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
2: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
1: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
2: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
1: और एंटरटेनमेंट,
2: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
1: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
2: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
3: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 926641।
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
5: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy।
6: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn। समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
8: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
9: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

एंड वार्म वेलकम बैक टू म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत जो कि जुड़े हुए हैं विद द टॉपिक समर कूल। समर कूल यानी कि समर के इस गर्मी के मौसम में यू वांट टू कूल ऑफ, एंड दैट हैपेंस यूजुअली व्हेन यू आर नियर ए बॉडी ऑफ वाटर। और बॉडी ऑफ वाटर में के जहन से बहुत सारी बातें आती हैं। यू थिंक ऑफ बीचेस, यू थिंक ऑफ समुंदर, द ओशन, द सागर, द वाटरफॉल्स एंड मोर, बिकॉज द होल आइडिया इज यू जस्ट वांट टू कूल डाउन। And sometimes all you need to do is welcome the beautiful rain. और यही कर रही हैं ऐश्वर्या राय इस गाने में। वैसे आपसे पूछती हूँ कि बॉलीवुड को वाटर ऑफ बॉडी से क्यों इतना प्यार है। सो वाई डू वी असोसिएट बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड हैविंग वाटर? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? वॉट डज इट डू टू द सीन और टू एनी सॉन्ग? गिव मी अ कॉल, लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट एट 972-235-5555।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

देखो बंदू गेला गेला दिल धड़कने दो पानी पानी एंड मोर आई गॉट क्वाइट अ फ्यू सॉन्ग्स फॉर सॉन्ग्स जिनमें बॉडी ऑफ वाटर दिखाई देता है. वेल वी हैव अ विनर एज वेल. अर्चना यू आर आवर विनर फॉर दी चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन की तरफ से $10 ऑफ योर बिल ऑफ $50 फॉर डाइन इन ओनली. कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट. हियर्स अनदर वन ऑन द वाटर फॉर श्योर. Hrithik Roshan and Deepika Padukone.

0: Not only does Bollywood show water, but also shows exotic locations. Well, a lot of these songs are colorful and beautiful and upbeat, and we'll be back with more.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes, and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स
7: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
5: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
8: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
5: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
9: बेटा 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
9: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
9: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
15: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में? सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
0: एंड अ वार्म वेलकम बैक टू द फाइनल सेगमेंट फॉर दिस मॉर्निंग म्यूजिक मंत्र, जिसमें रही हूं मैं आपके संग संगीता। आपका और मेरा साथ रहता है हर सैटरडे सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक। ले आती हूँ आपके लिए हर बार एक अनोखी प्रस्तुति। आज की इस प्रस्तुति में ले आई हूँ समर कूल या का थीम, यानी कि सॉन्ग्स दैट हैव अ बॉडी ऑफ वाटर। And that will, just the thought of being around the water body is going to cool you off. And with that in my mind, I have this track for you. I hope you enjoy this segment. This one houses some fun-filled tracks that will take you to in the mood to just cool off and have a good weekend ahead. And here's the first one. Ye filmaya gaya tha Houston ke water wall ke paas. If you've not been there, it's a great place, you know, a great place to spend some time, say about a few hours and cool off. You could pack a little picnic and enjoy the water wall.

0: फैंटास्टिक सॉन्ग. जब भी हम बाहर होते हैं और यू नो वी आर अराउंड बॉडी ऑफ वाटर, कहीं पूल पर हैं या बीच पर हैं, तो कभी कभी कुछ यू नो स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट हो सकता है, राइट? कभी इसके इससे ज्यादा भी होता है. व्हाइल यू आर ऑन योर वे टू द बीच फॉर एग्जांपल, मे बी यू गेट इन्वॉल्व्ड इन अ कार और अ ट्रक एक्सीडेंट. वेल वी होप नॉट, बट इफ यू डू, I want to tell you that you wanted to keep the name and the number for Attorney Omar Khwaja handy. Attorney Omar Khwaja can be reached at 469-300-5046. Now, what will he do? Well, Attorney Omar Khwaja will fight for your case and help you get the compensation that you deserve. इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी ये बात कर लेते हैं. काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है वो वाला प्रोसेस, बट ये आपकी मदद करते हैं. और जब ये सब चल रहा है, यू वांट टू आल्सो मेक श्योर, यू नो व्हाट, देयर इज सो मच गोइंग ऑन, बट यू आल्सो वांट टू मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पेंसेटेड. तो उसकी उसका भी ये उसमें भी हेल्प करते हैं अटर्नी ओमर ख्वाजा. एंड फ्रेंड्स, यू डोंट पे अंटिल यू विन. सो व्हाई वेट? Keep this number handy, but also go ahead and get some information available to you, so when you know that moment strikes, you have it. Visit the website attorneyomar.com. The phone number one more time, 469-300-5046. 469-300-5046.
1: The Dill of Dallas. Heart to heart, Fun Asia.
0: Why does Bollywood love beaches, the boats, the rain? Well, water adds movement, color, and emotion to the scene and allows us to have fun and party as well. Party at the beach in this one from the film Race 2.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे।
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही

0: जगह HEB में सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
1: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
2: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
4: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी।
3: द टेक्सास सुपर किंग्स आर हियर एंड द एक्शन इज एब्सोल्युटली हीटिंग अप। डोंट मिस अ सिंगल थ्रिलिंग मोमेंट। Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
5: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
6: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
7: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
6: कहाँ?
8: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
3: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं। Oura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
10: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914।
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: शक्ति, संस्कृति और समर्पण की एक यादगार शाम आपका इंतजार कर रही है। इस Saturday 11 जुलाई शाम 7 से 9 बजे अपने पूरे परिवार के साथ आइए कृष्णा हेरिटेज सेंटर शंकुस्थापना महोत्सव में। एक भव्य 11 एकड़ कैंपस की शुरुआत का जश्न मनाइए, जहां बनेगा कृष्ण टेंपल, गौशाला, फ्री स्कूल, इवेंट्स हॉल और रेस्टोरेंट। शाम को और भी खास बनाएंगे, गो पूजा, नरसिम्हा यज्ञ चैंटिंग, किड्स मेला, भजन क्लबिंग और सबके लिए फ्री डिनर फीस्ट। मायर्स पार्क ऑपोजिट कृष्णा हेरिटेज सेंटर, 7082 कंट्री रोड।
13: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
14: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद, फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555। अ बिग शाउट आउट टू संगीता फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM। एंड सैटरडे होता है जस्ट चिल में ट्रैवल सेगमेंट, ट्रैवल सेक्शन, और आज मैं ले चली हूँ आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन पर जहाँ या तो आप जा चुके हैं या जाने का मन रखते हैं, या फिर ये फीफा वर्ल्ड कप के चलते आपको इस जगह के बारे में कुछ इंटरेस्ट जाग गया है। जी हाँ, सो आज हम बात करेंगे नॉर्वे की। सो अगर आप नॉर्वे जा चुके हैं, कुछ मज़ेदार यादें हैं, बातें हैं जो करना चाहें शेयर, देन द स्टूडियो नंबर 972-235-5555। सो द वेरी फर्स्ट फैक्ट दैट आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट नॉर्वे इज, पता है आपको कि इन नॉर्दर्न नॉर्वे द सन डज नॉट सेट फॉर अराउंड 76 डेज ड्यूरिंग समर। सोचो कि For almost 76 days, the sun does not set.

टेकन फ्रॉम द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एंड जैसा कि मैंने आपको नॉर्वे के बारे में बताया दैट समर में ऐसा भी होता है कि क्लोज टू 75-76 डेज यू नो नॉर्दर्न नॉर्वे में द सन डज नॉट सेट। सो इमेजिन प्लेइंग क्रिकेट और हाइकिंग एट मिडनाइट इन ब्रॉड डे लाइट, राइट? क्या मतलब मजे की बात है कि भाई हम आधी रात है लेकिन हम हाइकिंग कर रहे हैं क्योंकि सूरज जो है वो एकदम मजे से निकला हुआ है।

वेल दैट वाज टेकन फ्रॉम कयामत से कयामत तक. अच्छा भाई, ये कयामत तक वेट ना करना पड़े आपको अपने डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए, तो इसीलिए मैं आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि ये आपको 5 या 10 मिनट नहीं अपने अपॉइंटमेंट में, बल्कि पूरे 30 मिनट देते हैं, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम, राइट? सो बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर ट्रीटेड लाइक फैमिली. फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज देयर. 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल. सो एन्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 डिफिशियंसी टेस्टिंग एंड मोर आर ऑल अवेलेबल एट पैशन हेल्थ. स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टूडे. कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट. याद रखिएगा, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, द नंबर वंस अगेन इज 214-666-6259.

that was taken from the movie जब तक है जहां. एंड यू नो नॉर्वे की बात कर रहे हैं तो आपको बताऊं कि इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज. नॉर्वे कंसिस्टेंटली रैंक्स अमंग द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्रीज. पता है क्यों? थैंक्स टू इट्स हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्टनिंग नेचुरल सराउंडिंग्स. तो जनरली लोग वहाँ चिल रहते हैं, खुश रहते हैं.

वेल दैट वॉज अदिति हंसते। अरे भाई मैं कहती हूँ वाई जस्ट अदिति, हम सबको हंसते रहना चाहिए बिकॉज एक इट डजन कॉस्ट यू एनी थिंग एंड इट मेक्स यू लुक सो मच मोर प्रिटियर। सो हंसते रहें, खुश रहें, यही एक मंत्रा होना चाहिए। यू नो जैसे मेरा मंत्रा है जस्ट चिल। भाई कुछ भी हो, जस्ट थिंग, जैसे वो उसमें था ना थ्री इडियट्स में कि ऑल इज़ वेल बोलते रहें, ऐसे मेरा मंत्रा है जस्ट चिल। वेल दिस पार्ट ऑफ आर शो इज ब्रॉट टू यू बाई एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US। ये आपको ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। आप इन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं, दे आर वेरी एफिशिएंट एंड दे कैन गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर। सो आपको कोई भी टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, सो एजी फिनटैक्स इज देयर फॉर यू। यू कैन कॉल देम, द नंबर इज 4699429888। द नंबर वंस अगेन इज 4699429888 और विजिट agfintax.com। दैट्स agfintax.com। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग, वेल दैट्स टेकन, यू नो दैट्स लव यू जिंदगी एंड इट्स अ सॉन्ग रिक्वेस्ट। यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कॉल, द नंबर टू द स्टूडियो इज 9725255555।

0: the Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
1: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉपटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉपटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
3: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
4: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.

Well, that was taken from the movie Dhurandhar. This is Madhulika लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम as the name suggests, Just Chill. Well, Saturday होता है हमारा travel segment और आज हम बातें कर रहे हैं नॉर्वे की. तो अगर नॉर्वे की बात करूँ तो आपसे पूछना चाहूँगी कि do you know what is a fjord? Fjord is basically deep narrow sea inlets surrounded by towering cliffs. यू नो एंड ये बड़े खूबसूरत होते हैं. एंड अगर आप नॉर्वे जाएं तो फ्योर्ड्स देखना बिल्कुल मतलब बनता ही बनता है. एंड नॉर्वे हैज़ ओवर 1000 फ्योर्ड्स. यू नो इट्स लिटरली सम ऑफ देम आर कंसिडर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. तो यहाँ तो आप ज़रूर ज़रूर ज़रूर जाइएगा.

Well, that was ये इश्क हाय टेकन फ्रॉम जब वी मेट और जन्नत दिखाए भैया. हम बता देते हैं कि हम लेडीज़ को ना ज्वेलरी देख के ऐसा ही लगता है कि जन्नत मिल गई. मतलब आप ज्वेलरी उन्हें गिफ्ट कर दें खुश हो जाएंगी. तो आपको मैं PMJ ज्वेल्स के बारे में बताना चाहूँगी एज दे हैव कम टू फ्रिस्को ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सेलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलेक्शन है इनका. यू कैन एक्सप्लोर स्टनिंग गोल्ड डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शंस फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन. और मैं तो कहती हूँ कि किसी सेलिब्रेशन या माइलस्टोन का क्यों वेट करना, ऐसे ही गिफ्ट कर दें खुश हो जाएं. प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा घट्टामननी, PMJ जो है इज अ नेम ट्रस्टेड बाय जनरेशंस. आप विजिट करें PMJ ज्वेल्स इन फ्रिस्को, इट्स ऑन मेन स्ट्रीट, एंड डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी. That's PMJ Jewels for you all.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Beta, 95% aaye?
6: Haan, mummy.
5: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
7: Mera?
5: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated?
7: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट एजीफिनटैक्स.कॉम, कॉल 972

0: 618-8555. AG Fintechs led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
6: Wait, itna sab aur price?
0: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
7: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
1: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में सब संभाल लेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
8: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, just chill. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. आज हम बातें कर रहे हैं नॉर्वे की. सो अगर आप नॉर्वे जा चुके हैं, कुछ सुनहरी यादें हैं जो करना चाहें शेयर, देन द स्टूडियो नंबर रिमेंबर इट्स 972-235-55-55.

वेल, अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं एंड यू आर डेफिनेटली फीलिंग हॉट हॉट हॉट, भैया वेदर ही ऐसा है, तो मैं बता दूं Page 3 Eatery के बारे में, बिकॉज़ यू नो यहाँ पर आपको फ्यूजन बढ़िया बढ़िया इंडियन स्ट्रीट फूड मिल सकता है विद विच मीट्स मॉडर्न फेयर, चाहे हो कबाब या हो चाट या फ्यूजन बाइट्स या फिर मॉकटेल्स. यू नीड टू गो टू Page 3 Eatery बिकॉज यू गेट वाइब्रेंट वाइब्स फॉर ब्रंच, लंच और डिनर. इट्स परफेक्ट फॉर फूडीज, फॉर डेट्स एंड फॉर फ्लेवर चेजर्स. तो आप विजिट करें Page 3 Eatery.com फॉर फर्दर डिटेल्स एंड डेफिनेटली हैव अ फन टाइम विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स वेन यू गो टू Page 3 Eatery.

कभी कभी होता है दैट ना चाहते हुए भी यू डू गेट इन्वॉल्व इन अ ट्रक और कार एक्सीडेंट या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट, तो आपको अटर्नी ओमर ख्वाजा रखने हैं याद, एज ही कैन फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी वही डील करेंगे, सो यू आर एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री एंड यू नो यू डू नॉट पे अंटिल यू विन. सो जब तक आप अपना केस जीत नहीं जाते, यू डू नॉट हैव टू पे हिम एनीथिंग. सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 4693005046 और विजिट attorneyomar.com. That's attorneyomar.com.

That was the title track of Dil Chahta Hai. और Dil Chahta Hai कि the best team should win, right? FIFA World Cup fever is very much on. तो चलिए कुछ ज्ञान हम भी बांट देते हैं. आपको पता है कि नॉर्वे की जो ये मेन टीम है, they returned to the FIFA World Cup in 2026 after a 28-year absence. Yes, their previous appearance was in 1998. और एक और मजे की बात, नॉर्वेज वुमेन हैव ऑलरेडी वन अ फीफा वर्ल्ड कप. दे बिकेम वर्ल्ड चैंपियंस इन 1995, डिफीटिंग जर्मनी 2-0 इन द फाइनल.

Well, that was taken from the movie Thugs of Hindustan. And अब आ गया है आपके लिए एक गिव अवे. द गिव अवे इज कमिंग फ्रॉम फन पिज्जा किचन. आपको मिलेगा $10 गिफ्ट कार्ड जो कि आप फिस्को लोकेशन से उठा सकते हैं. इट्स यू नो सो द क्वेश्चन फॉर द गिव अवे इज कि अब कश्ती की बात हो ही रही थी तो आप मुझे बॉलीवुड के कोई भी तीन गाने बताएं. टेल मी एनी थ्री बॉलीवुड सॉन्ग्स विच आर पिक्चराइजिंग अ बोट और अ शिप. So tell me any three Bollywood songs which are picturized on a boat or a ship, and you can win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen, where you go if you are craving for something cheesy with a desi twist. And the next one, well, that's taken from a pop Hindi pop album song. It's one of my favorites, so thank you so much for requesting this wonderful song.

0: ऑल राइट
1: right,
0: तो मैंने पूछा था आपसे सवाल कि आप मुझे कॉल करें और बताएं कोई भी तीन बॉलीवुड गाने जो कि कोई बोट या शिप पर पिक्चराइज्ड हों, एंड यू विल विन अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. एंड वी डू हैव अ लिस्टनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
2: है.
0: हाय, हाउ आर
2: मेरा
0: यू?
2: नाम कृतिका. या गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग ग्रेट कृतिका, थैंक यू फॉर आस्किंग. सो टेल मी, व्हाट आर द थ्री सॉन्ग्स दैट यू वांट टू टेल अस अबाउट?
2: सावन का महीना,
0: क्या बात है. ओके, पवन करे सोर. ओके,
2: या धक धक, दैट वन. धक धक इज दैट वन.
0: धक धक. धक धक तो माधुरी दीक्षित का गाना है.
2: नो नो नो नो नो, फर्स्ट वन इज दैट कल बोलिया, लाइक दैट वन सॉन्ग.
0: अच्छा, गल्ला गुड़िया.
2: गल्ला गुड़िया, या
0: ठीक है, गल्ला गुड़िया इज अगेन शॉट इन अ शिप. यस,
2: ये चांद सितारे, लाइक दैट वन, थर्ड वन
0: द चांद सितारे. ओके, सो लाइक प्यार. ओके, फ्रॉम कहो ना प्यार है, राइट?
2: या.
0: ओके, ऑसम कृतिका, ऑसम, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस. जीत लिया आपने $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. आई एम टेकिंग यू ऑफ हियर फॉर सम डिटेल्स व्हाइल आई एम गोना प्ले सम ऑफ द सॉन्ग्स दैट यू जस्ट मेंशन्ड. सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
2: थैंक यू,
0: थैंक यू,
2: बाय. थैंक यू, बाय.

चलिए आपको एक और नॉर्वे की मजेदार बात बताती हूँ. आपको ये तो पता ही है कि ड्यूरिंग समर पार्ट्स ऑफ नॉर्वे एंजॉय 24 आवर्स ऑफ डेलाइट एंड विंटर में सम प्लेसेस डोंट सी द सन फॉर वीक्स. हाउ सैड इज दैट. लेकिन समर में ये भी तो है कि 24 आवर्स डेलाइट रहती है. देन नॉर्वे हैज़ मोर देन 1000 फियॉर्ड्स, यू नो, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सीनिक कंट्रीज. एंड एक और मजे की बात ये दैट द फ्लैम रेलवे क्लाइम्स नियरली 900 मीटर्स, दैट्स लाइक 2800+ फीट इन जस्ट अबाउट 20 किलोमीटर्स, मेकिंग इट वन ऑफ द स्टीपेस्ट स्टैंडर्ड गॉज रेलवेज इन द वर्ल्ड. दैट्स अनदर एक्सपीरियंस टू हैव वेन यू गो टू नॉर्वे.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
7: Shadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं, उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस।
9: क्या मतलब?
10: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स।
9: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर मनी। हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
10: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज। दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड।

0: दिस इज KZMP 104.9 FM Fun Asia Radio पे आप हो मेरे यानी कि नीलम के साथ और एक बार फिर से आप सब की खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी दोस्तों, एक कुछ और बातें, कुछ और म्यूजिकल मुलाकातों में गाने, और ये गाने होते हैं आपके साथ, बातें होती है टिल 2 PM बेस्ड ऑन द बॉलीवुड थीम। कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय की हम करते हैं बातें, किसी कलाकारों की बातें, किसी एक शब्द पर आधारित गाने वगैरह वगैरह, और बहुत सारे सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ मैं नीलम ऑन सैटरडेज टिल 2 PM। और 2 से 3 के बीच में जो बातें होती है हमारी, वो होती है बातें, जी हाँ, कम्युनिटी की, जहाँ पर हम बातें आपके लिए लाते हैं कम्युनिटी में होने वाले बहुत सारे नॉन प्रॉफिट इवेंट्स की, एक्टिविटीज़ की जानकारी, और ये सारी बातें, सारी जानकारी आपके साथ रहती है टिल 3 PM। सुना आपने मधुलिका को टिल नून, और अब आपका और हमारा साथ होगा टिल 3 PM। कुछ मिले जुले गाने, नगमे, तराने हैं, और उसमें है फिल्मी कहानी का सेगमेंट। अगर आपने कभी ये सेगमेंट नहीं सुना, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट फिल्मी कहानी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार।
1: अच्छा, चल चल उठ जा, जाते हैं।

बांसुरी और उसके साथ गिटार, क्या बात है जी। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत शुरुआत जो थी इस गाने में, वो दिल को छू लेती है। यार रहमान जी का संगीत और इस गाने को अपनी मखमली आवाज़ दी थी मोहित चौहान ने। इस गाने के दौरान कहा जाता है कि रणबीर कपूर जो इतने इस फिल्म में इन्वॉल्व थे फ्रॉम द बिगेनिंग, एंड यू नो ही वॉन्टेड टू मेक श्योर कि वो हर एक रिकॉर्डिंग में हाजिर हो। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि पहले जब भी मूवीज़ में गाने रिकॉर्ड हुआ करते थे, एंड यू मस्ट हैव हर्ड दैट टू, कि 60s और 70s के दौरान, इवन बिफोर दैट, जो भी कलाकार हुआ करते थे, चाहे आप 50s या 60s के कलाकारों की बात कर ले या 60 उसके बाद के भी, दे ऑलवेज वॉन्टेड टू बी प्रेजेंट इन द रिकॉर्डिंग स्टूडियो जब भी ये गानों की शूटिंग होती, नॉट शूटिंग, रिकॉर्डिंग होती थी। क्योंकि जो कलाकार होते थे दे यूज़ टू बी वेरी मेथडिकल, दे वॉन्टेड टू मेक श्योर कि ये जिस तरह से गायकी को, जिस तरह से आवाज़ दी गई है, उसी तरह से वो भी अपनी फिल्म में जब भी ये गाने दिखाए जाए, दे ट्राई टू ब्रिंग दैट हरकत ऑन देयर फेस। ऐसा ना हो कि लग रहा है कि हाँ किसी और ने गाया है और ये भाई बंदे जो है वो सिर्फ अपने होंठ फड़फड़ा रहे। सो दैट वॉज अ डेडिकेशन फॉर ईच एंड एवरी आर्टिस्ट। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल के स्टार हर एक गाने के दौरान हाजिर नहीं रहते। ये ऑफकोर्स दे डू मेक श्योर कि कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ जो है, जो प्लेबैक सिंगिंग की आवाज़, अपने आवाज़ से मिलती जुलती हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक गाने में वो हीरो या हीरोइन हाजिरी होगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। खैर, ऐसी बहुत सारी बातों के साथ मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ यहाँ पे हर वीकेंड, सैटरडेज़ 12 से 3 के बीच में, एंड संडेज़ आपका और हमारा जो साथ होता है वो होता है 2 बजे तक। आज है फिल्मी कहानी का सेगमेंट, जिसमें मैं आपको सुनवाती हूँ 2 या 3 लाइन में एक कहानी, बहुत ही प्यारी सी कहानी जो फिल्मी होती है, पूरी फिल्मी, जी हाँ, टोटल फिल्मी कहानी होती है, जिससे आपको फिल्म का नाम पहचाना होता है। लेकिन उसके दौरान बहुत सारे गाने आप ही के, कुछ पसंद के, कुछ हमारे पसंद के रहेंगे आप ही के साथ ऑन 104.9 FM।

0: अरे मैं हूँ ना।
1: मर गया, एक और शहीद हो गया। अरे क्या जरूरत थी उमर कैद ले लेने की, अच्छा भला था। अच्छा ये लड़की कौन है जो अभी शगुन दे गई?
2: क्या तुमको भी शगुन चाहिए क्या?
1: अरे नहीं नहीं, बहुत बोलती है ना, बहुत तेज है।
2: मिस्टर वो मेरी बेटी है।
1: बेटी? नहीं, दिमाग बहुत तेज है, गड़बड़ हो गई। मर गए यार। वैसे उनका शुभ नाम क्या है?
2: लड़के बारात में आए हो वरना परात में डाल के गुन देता।

0: अरे बर्बादी, असल में मैं तुम्हीं को ढूंढ रहा था।
1: मेरे पिताजी भी तुम्हीं को ढूंढ रहे हैं।
0: अरे बाप रे, अरे भाग बे।
2: मणिरत्नम साहब की एक फिल्म आई थी इन 2000 तमिल फिल्म थी जिसका नाम था अलाई पयुथे। जी हाँ, ये एक तमिल फिल्म थी जिसकी हिंदी फिल्म बनाई गई उसकी रीमेक करके, और इसका नाम रखा गया साथिया, जिसमें थे एज यू रिमेम्बर विवेक ओबेरॉय थे, रानी मुखर्जी, एक शाहरुख खान का एक बहुत ही छोटा सा रोल था। ये जो गीत आपने सुना, कहा जाता है कि, मैंने तो नहीं देखी वेल, लेकिन एक हॉलीवुड फिल्म है जिसका नाम है एक्सलेंट हस्बैंड, जिसमें इस गीत को इस्तेमाल किया गया था। क्या बात है भाई, हमारे हिंदी गाने बॉलीवुड गाने की देखिए पहुंच कहां कहां तक है, राइट, कहां कहां तक पहुंच जाते हैं। सो दैट वाज द फिल्म साथिया, जिसका गीत आपने सुना मेरे साथ ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो। कमर्शियल ब्रेक होगी थोड़ी ही देर में, लेकिन उसके बाद मैं आपको पूछूंगी, पहले कहूंगी बाद में पूछूंगी, राइट, पहले मैं आपको एक कहानी बताऊंगी और उस कहानी के बाद आपसे सवाल पूछूंगी कि ये कौन सी फिल्म है। बिल्कुल फिल्मी कहानी होती है और उसके किरदार के नाम से, आपको कहानी से, एंड यू नो द फन थिंग इज़ कि मैं आपसे बहुत लंबी चौड़ी 3 घंटे की जो कहानी होती पूरी, ऑफकोर्स 3 घंटे तो मैं नहीं रहती, 2 या 3 लाइन में आपको कहानी बताती हूँ, तो उससे आपको फिल्म का नाम पहचाना होता है। लेकिन ये सारी बातें होगी इस गाने के बाद, और ये सारी बातें गाने तराने आपके लिए रहते हैं एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM।

0: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
1: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
3: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: बेटा 95% आए?
6: हाँ मम्मी।
5: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
7: मेरा?
5: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
7: वो
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: Ye tara wo tara har tara.
8: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे। The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
11: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
12: वेलकम बैक, दिस इज केजीएमपी 104.9 एफएम फनेश रेडियो पे। मैं हूं नीलम आपके साथ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सैटरडे आफ्टरनून देखिए आपका और हमारा साथ होता है, शनिवार की दोपहर एंड ऑल्सो ऑन संडे आफ्टरनून। ड्रीम ऑफ मॉर्गेज को याद करना चाहूंगी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। जी बिल्कुल, अगर आप नया घर ले रहे हैं, नए घर की तलाश में है, अगर नया नहीं भी है लेकिन रिफाइनेंस करवाने की कोशिश में है, तो वेल मैं आपको नाम दे देती हूँ हुसैन भाई का, जिनका नंबर है 9722455626 और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com। काफी सालों से आप ही की सेवा में, जहां पर आपके ख्वाब को सच में हकीकत में बदलने की उनकी होती है कोशिश, एंड दैट इज ड्रीम होम मॉर्गेज। ख्वाब देखना बहुत अच्छा लगता है लेकिन हकीकत में कभी कभी हमारे साथ मिसअप हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, छोटे मोटे, बड़े बड़े छोटे, राइट। अगर इसी केस में अगर आप फंसे हुए हैं और सोच रहे हैं कि किसी को कॉल किया जाए जो हमारी मदद कर दे, इंश्योरेंस कंपनी से लेके बहुत सारे और भी मसले होते हैं, तो वेल दैट इज ओमर ख्वाजा। नंबर है उनका 4693005046। Once again, that is 4693005046 और you can visit attorneyomar.com। आपको बिल्कुल पे नहीं करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ भी आपको पे नहीं करना अंटिल यू विन, एंड दैट इज attorneyomar.com। और आज है फिल्मी कहानी का सेगमेंट, जिसमें मैं आपको एक कहानी सुनवाती हूँ और कहानी से आपको फिल्म का नाम बताना होता है। पहले सुन लेते ये गीत, उसके बाद आएगी पहली कहानी आपके लिए ऑन 104.9 FM।

0: Everyone ready?
1: Ready, sir.
0: Valkolo, go.
2: Okay, sir.

0: पाइप के थ्रू इस टरबाइन में पानी आएगा, जिसकी वजह से
1: स्वदेश फिल्म से सुना आपने ये बहुत ही खूबसूरत गीत, और ऐसे बहुत सारी बातों के साथ मैं नीलम लाती हूँ आपके लिए हर वीकेंड, जी हाँ, शनिवार की दोपहर एंड ऑल्सो ऑन संडे आफ्टरनून, ये म्यूजिकल बातें, गाने और तराने, और हर रविवार हर शनिवार की दोपहर जो मुलाकातें होती है, विषय कोई भी हो लेकिन बातें होती है, गाने होते हैं बहुत ही सुरीले। चलिए इसी बात पे फिल्मी कहानी का जो सेगमेंट है उसमें आपके लिए पहली जो कहानी लाई हूँ मैं, वो मैं आपको सुनवाती हूँ। कहानी है डॉक्टर सिद्धार्थ की। डॉक्टर सिद्धार्थ अपने पापा डॉक्टर आकाश की एक अधूरा जो सपना है कि उनकी अस्पताल जो है, हॉस्पिटल है, उसे बहुत ही मॉडर्न बनाना चाहते हैं, आधुनिक बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो पूरे दिल और जान से काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनका ये रास्ता बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वो मुश्किलात तभी दूर होगी अगर वो एक अमीर, बहुत ही अमीर लेकिन सन की लड़की है सोनिया, उससे शादी कर ले, क्योंकि सोनिया को वो बहुत ही पसंद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ की। सोनिया उन्हें बहुत ही पसंद करती है, क्योंकि और सोनिया ये शर्त रखती है कि अगर वो अस्पताल की फंडिंग कर देगी तो डॉक्टर सिद्धार्थ को उनसे शादी करनी पड़ेगी। अब सिद्धार्थ के सामने दो ऑप्शंस हैं, अपनी सच्ची मोहब्बत नेहा जिसे वो बेतरह प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ पिता के अरमान। क्या चुनेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ, अपने प्यार को या पिता के अरमान को? एक दर्दनाक कश्मकश यानी कि एक कहानी। डॉक्टर सिद्धार्थ के सामने दो ऑप्शंस, सच्ची मोहब्बत नेहा या पिता का अरमान है कि जो अपनी अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उसे पूरा करना है, मॉडर्न बनाना है। नेहा या पिता, ये है कहानी इस प्यार की, मोहब्बत की, फर्ज की। और कहानी का नाम बताएंगे मुझे आप एंड फनेशा, यू आर लाइव ऑन एयर।
2: हाँ जी, मैं विशाल बात कर रहा हूँ।
1: जी विशाल जी, क्या है आपका जवाब?
2: एक्चुअली मूवी का नाम है अरमान।
1: अरे वाह विशाल जी, आपने मूवी रिसेंटली देखी है या आपको नाम याद रह गए थे?
2: नहीं, मैंने एक्चुअली ये बहुत पहले देखी थी, बट इसके गाने अच्छे थे इसलिए मूवी याद है।
1: मूवी याद इसीलिए रह गई थी। एंड अमिताभ बच्चन, ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन, राइट?
2: यस,
1: अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर साथ में।
2: अनिल कपूर
1: जी, क्या बात है।
2: साथ में मतलब प्रीति जिंटा है जो फेवरेट हीरोइन है, इसलिए याद है।
1: लेकिन आपकी फेवरेट हीरोइन ने काम अच्छा इसमें, बहुत ही नेगेटिव आपकी फेवरेट हीरोइन ने काम किया था, आपको अच्छी लगी थी?
2: मतलब नेगेटिव रोल था बट फिर भी अच्छा था।
1: ऑफ कोर्स शी इज एन आर्टिस्ट, राइट? कोई भी रोल वो अच्छा ही करेगी। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सर। कहानी मैं बताती हूँ, नाम बताते हैं मुझे आप एंड फनेशा, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, यस सर। जी सर, यू आर ऑन एयर।
3: यस यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? तो
1: यस सर, यू डिड हियर द क्वेश्चन?
3: नो, आई डिडंट हियर द क्वेश्चन।
1: ओके, नो वरी सर, आई विल टेक यू ऑफ एयर।

चौहान और उनके साथ सोनू निगम की आवाज़, फिल्म का नाम अरमान, शंकर एहसान लॉय का संगीत था इस फिल्म में, जिसमें थे अनिल कपूर, उनके साथ थी प्रीति जिंटा एंड अमिताभ बच्चन के साथ ग्रेसी सिंह। ना ये स्टार कास्ट सुनकर या देखकर अगर आपने भी फिल्म देखी होगी, आपको भी अच्छी लगी होती। इट वॉज अ वेरी डिसेंट फिल्म, राइट? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस फिल्म ने इतना अच्छा बिजनेस नहीं किया था। एंड देन यू स्टार्ट वंडरिंग कि क्यों भाई। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया थी, अनिल कपूर जी की एज यूजुअल, ही वॉज यू नो चार्मिंग एट टाइम्स एंड एट टाइम्स ही वॉज सीरियस। उन्होंने हर शेड्स, हर रंग को दिखाया था पर्दे पर्दे पर। सिमिलरली प्रीति जिंटा पहली बार शायद नेगेटिव शेड्स में नजर आई थी, उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। फिर क्या ऐसी बात थी कि फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई? सो समटाइम्स यू कॉन्ट रियली फिगर आउट कि जो मासेस है, मासेस की मैं बात कर रही हूँ, क्लासेस की बात नहीं कर रही हूँ, मासेस की बात कर रही हूँ, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो थिएटर में जाके देखना पसंद करते हैं, और वो चीज़ अगर उन्हें नहीं मिलती तो फिल्म हो जाती है फ्लॉप। शायद कहीं ना कहीं इस फिल्म में भी वो एलिमेंट नहीं था जो मासेस को पसंद आए। इसी बात पे एक और फिल्म हो जाए, मणिरत्नम की ये फिल्म थी, रावण नाम था। ये फिल्म बहुत ही उम्मीदों से मणिरत्नम ने बहुत सारी लैंग्वेजेस में बनाई थी, लेकिन हिंदी में इस फिल्म ने डिजास्टर किया था। एंड इट वॉज ऐश्वर्या राय, उनके साथ अभिषेक बच्चन इन अ नेगेटिव रोल, इस फिल्म ने बहुत बुरा बिजनेस किया था, इवन दो इट वॉज बाय मणिरत्नम।

अच्छा, आपने लव एट फर्स्ट साइट का नाम हमेशा सुना है, राइट? कि किसी को देख के पहली बार दिल में कुछ गिटार बजने लगे और पहली बार लगे कि बस यही प्यार है, यही मोहब्बत है। गाने में कभी आपको ऐसा हुआ है कि पहली बार कोई गाना सुनकर, कोई गीत सुनकर आपको उसके सिंगर्स बहुत अच्छे लगने लगे, आपको वो गाने से प्यार हो जाए, आप वो सिंगर की बड़े फैन बन जाए, जस्ट विद वन सॉन्ग? और यही बात बहुत सारे लोगों के साथ हुई होगी, इंक्लूडिंग मी, कि जब पहली बार मैंने ये गीत सुना था, तू है तो डर नहीं लगता, किसी के हो नहीं सकते, आई वॉज लाइक वाह, व्हाट अ सॉन्ग। और उसके जो गाने के बोल लिखे, उसका नाम है सागर और सिंगर्स है वो है हनी बनी। पहली बार इन सिंगर्स को मैंने सुना था, पहली बार बॉलीवुड में इनफैक्ट उनकी आवाज़ सुनाई दी थी। इंडिपेंडेंट म्यूजिक का एल्बम्स उन्होंने बनाए होंगे, लेकिन बॉलीवुड में वो कभी भी उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं दी थी। लेकिन इस गाने में वो जादू था, इवन दो नॉट मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? अगर आप सुने सिर्फ गिटार है साइड बैकग्राउंड में, तो वही गिटार की धुन पर पूरा गीत है, पूरा गीत है, विथ अ ब्यूटिफुल मेलोडियस जो उसकी जो धुन है, अलॉन्ग विथ अ हार्ट टचिंग लिरिक्स। लिरिक्स इतनी अच्छी तरह से लिखे गए, सागर जो मैंने कहा कि उनके हैं लिरिसिस्ट, और हनी बनी ये नाम है हनी जी हाँ, ये एक्चुअली हमें लगती है फनी बात, लेकिन ये उनके सिंगर्स के नाम है। और इस गाने के बाद आई एम श्योर उन्हें बहुत सारे और भी गाने मिलने लगे होंगे बॉलीवुड में, लेकिन सम हाउ समवेयर इतनी आवाज़ें फिल्मों में अभी तक मुझे नहीं सुनाई दी। खैर, लेकिन जैसे मैंने कहा कि देखिए, आप भी हमारी तरह होगी, अगर संगीत से प्यार है, संगीत अच्छे संगीत से प्यार है, तो कोई गाना चाहे आप पहली बार सुने, पहली बार कोई आवाज़ें सुने, फिर भी लगता है कि बस दिल को छू गई ये बात है, एंड दिस इज़ इट, आई एम अ फैन ऑफ दिस सिंगर, है ना? होता है आपके साथ भी? और मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड। श्री कृष्णा ज्वेलर्स, आपके घर के त्यौहार के लिए, आपके घर के माइलस्टोन्स, कोई भी फेस्टिविटीज़ हो, शादी हो, कोई भी बड़ी बड़ी बात हो, या कोई छोटे मोटे ऐसे एक्सक्यूजेज हो किसी को खास महसूस करा

0: कोई भी फेस्टिविटीज़ हो, शादी हो, कोई भी बड़ी बड़ी बात हो, या कोई छोटे मोटे ऐसे एक्सक्यूज़ेस हो किसी को खास महसूस कराने के लिए, देन इट इज़ द श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहाँ पर ए रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन एलिगेंस एंड टाइम लाइज ब्यूटी, दैट इज वंस अगेन श्री कृष्णा ज्वेलर्स लोकेटेड इन फ्रिस्को सिंस 1967, आपकी सेवा में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहाँ पे है फाइन ज्वेलरी एंड चेरिश्ड मोमेंट्स। ये बातें, ये गाने, ये तराने फिल्मी कहानी के सेगमेंट के साथ रहते हैं आपके साथ हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM, 2 PM एक्चुअली, राइट आफ्टर 2 PM वी विल हैव अ कम्युनिटी राउंड अप, और रविवार की दोपहर आपका और हमारा जो साथ होता है वो होता है 2 बजे तक। चलिए विजनरी आई केयर को भी याद कर ले। जी हाँ, 2149722020। कभी कभार ये बातें होती है कि ग्लासेस अगर आप पहनते हैं, कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनते हैं, तब लगता है कि यार ये सारी झंझट छोड़ के बस लेजिक सर्जरी करवा दे, लेकिन देखिए आँख इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, राइट, और आप बहुत ही उसके लिए एहतियात बरतना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए, यू वॉन्ट एन वेरी वेरी एक्सपीरियंस डॉक्टर फॉर दैट, एंड दैट इज़ डॉक्टर शहजाद बाटलीवाला। तो ही इज़ लोकेटेड इन प्लेनो, आप बिल्कुल जा सकते हैं, ही विल एजुकेट यू फर्स्ट, ताकि आप आपकी आंखों के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए एक अच्छा फैसला ले पाए। 2149722020, और यू कैन विजिट lasikpleno.com, एंड इफ़ यू मेंशन फन एशिया 2020 तो आपको मिलेगी फ्री कंसल्टेशन। वंस अगेन, दैट इज विजनरी आई केयर। कहीं मत जाएगा, अभी भी कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने हैं आपके इंतज़ार में, कुछ कहानियां हैं आपके इंतज़ार में, कहानी मैं बताती हूँ, जवाब देंगे आप मुझे किरदार से, कहानी से, क्योंकि ये है बिल्कुल फिल्मी कहानी, टोटल फिल्मी कहानी का सेगमेंट कहानियां।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas, simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas, powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen, official tax and finance partner AG FinTax, official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja, in association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
7: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
8: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
1: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
7: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
9: माई टाइम इक्वेरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji,

0: 9745527 0897 or visit astrologerishwar.com.
1: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
2: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
5: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
4: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
7: इन प्लेनो।
6: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Isha Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: यहाँ फिल्म तो सुना आपने गीत। जी हाँ, ये फिल्म का नाम है और इस बहुत ही खूबसूरत गीत को संगीत से सजाया था शांतनु मोइत्रा ने, श्रेया घोषाल उनके साथ, शान की आवाज़ ऑन 104.9 FM। मैं हूँ नीलम आपके साथ, वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम। फिल्मी कहानी का सेगमेंट लाई हूँ आज आप सभी के लिए, जहाँ पर आपको मैं कहानी सुनवाती हूँ और वो कहानी से बताते हैं मुझे आप फिल्म का नाम। तो चलिए, तैयार है आप अगली फिल्म के लिए? और ये कहानी होगी किरदारों के नाम के साथ, जिससे आपको बताना होगा कि ये फिल्म है कौन सी। ऑन 104.9 FM फिल्म के लिए अगली फिल्म जो है हमारी। सो कहानी कुछ ऐसी है कि दिल्ली के एक पंजाबी मुंडे को प्यार हो जाता है तमिल लड़की अनन्या से। पंजाबी क्रिश और अनन्या की मुलाकात होती है चेन्नई की संस्कारी तमिल ब्राह्मण लड़की अनन्या, जिसकी मुलाकात दोनों की होती है IIM अहमदाबाद में। मुलाकात होते ही फिर क्या, दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अब है असली ड्रामा, जहाँ पर शादी के लिए एक दूसरे के परिवार को मनाना होगा, क्योंकि लड़का है पंजाबी, लड़की है तमिल। तो एक दूसरे की जो कल्चर को, एक दूसरे के परिवार के ट्रेडिशन को समझने के लिए ये तय किया जाता है कि एक दूसरे के परिवार को मिलने जाएंगे क्रिश और अनन्या। लेकिन फिर क्या होता है, क्या ये नॉर्थ एंड साउथ के बीच का जो टकराव है उसमें क्रिश और अनन्या अपनी मोहब्बत को फिर भी निभा पाएंगे या शादी कर पाएंगे? ये है कौन सी फिल्म जहाँ पर टकराव होता है कल्चर के बीच में, लेकिन प्यार तो भाई प्यार ही होता है। तो क्या है ये कहानी, बताएंगे मुझे आप, जहाँ पे अनन्या और क्रिश की कहानी पलती है IIM अहमदाबाद में। एंड द नंबर टू द स्टूडियो इज 9722355555। बताएंगे मुझे आप कि कौन सी है ये कहानी, अनन्या और चेन्नई की अनन्या, और उनके सामने है पंजाबी लड़का क्रिश। 9722355555। एंड फनीश, यू आर लाइव ऑन एयर, यू आर ऑन एयर, बताइए।
1: हेलो,
0: यस मैम, यू आर ऑन एयर, बताइए। और आपने देखी थी ये मूवी?
1: हाँ,
0: अरे वाह,
1: ये आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की फिल्म थी। थैंक यू मैम। एंड फन एज, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: हेलो, मूवीज आई थिंक टू स्टेट्स,
0: इट इज टू स्टेट्स, आपने देखी थी ये टू स्टेट्स?
1: हाँ जी देखी है।
0: देखिए क्या बात है, अच्छी मूवी थी, राइट? तो आप पंजाबी से है, कल्चर से है, या आप साउथ के कल्चर से, कहाँ से हैं आप?
1: पंजाबी कल्चर से।
0: तो सोचिए जरा कि अगर तमिल लड़के को आपसे प्यार हो जाता तो क्या होता।
1: नहीं, मैं अपने बच्चों को फेस कर रही हूँ आगे से, पता नहीं आगे से क्या आएगा अभी।
0: आई नो, नहीं, आई थिंक यू नो दैट इज ऑफकोर्स, ये जो कहानी लिखी गई थी कुछ सालों पहले की थी, आई एम श्योर अभी उसके बाद भी इंडिया में भी बहुत ही बदलाव आ गया है।
1: इस मूवी से प्रेरणा मिलती है कि बी प्रिपेयर, एवरीथिंग इज पॉसिबल,
0: प्यार में सब कुछ मुमकिन है। प्यार कहीं भी किसी से भी हो सकता है। एंड फनीशा, योर लाइव ऑन एयर। हेलो
2: हेलो,
0: यस सर, बताइए।
2: मैडम, मूवी का नाम है टू स्टेट, बेस्ड ऑन अ नॉवल,
0: यस सर,
2: चेतन भगत।
0: चेतन भगत की, एंड यू नो दैट कि चेतन भगत की अपनी जिंदगी की कहानी है, उनको भी ऐसे ही प्यार हुआ था और उनकी पत्नी जो है वो भी ऐसे साउथ से थी।
2: जी मैडम,
0: तो ये थी उनकी अपनी कहानी। थैंक यू सो मच सर। और आपने देखी थी ये फिल्म?
2: जी
0: ऑफ कोर्स देखी होगी।

0: कैसा है तू?
1: तू सेटल हो गया?
2: मॉम का है?
0: काम कैसा चल रहा है?
2: मॉम ठीक है या कुछ हुआ है?
0: मॉम ठीक है या नहीं?
2: नहीं भी होता तो क्या कर लेते आप?
3: बड़ा बदतमीज है तू।

स्टेट्स चेतन भगत ने लिखी थी अपनी रियल लाइफ की कहानी, प्यार की कहानी, जो बन गई थी बेस्ट सेलिंग नॉवल। अब आप अगर अहमदाबाद से हैं, सो इवन दो आई एम गुजराती, सबको पता है कि मैं गुजराती हूँ, जी बिल्कुल पक्की गुजराती, बट आई हैव नॉट स्टेड इन गुजरात। मैं गुजरात में बड़ी नहीं हुई हूँ, गुजरात में पली बड़ी नहीं हूँ, आई हैव ग्रोन अप इन मुंबई। तो लेकिन जितने लोगों ने भी ये फिल्म देखी होगी, अहमदाबाद के जो IIM को दिखाया गया था, एंड इट वॉज लाइक अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग, राइट? जब भी आप आपके शहर को देखते हैं बड़े पर्दे पर एंड वेरी पॉपुलर IIM को देखते हैं, उसके आसपास के इलाके को देखते हैं, एरियाज को देखते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको लगता है कि यार क्या बात है। एंड यू नो द फनी थिंग इज़ कि मुझे अभी भी याद है जब अहमदाबाद की बात चल रही थी, एंड वन ऑफ द सीन्स, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द डायलॉग्स, लेकिन उसमें किसी वो दाल खाती है किरण, आई थिंक उनकी मम्मी थी किरण राव, राइट? तो अहमदाबाद आती है एंड शी इज़ ड्रिंकिंग दाल, और वो किसी को कहती है कि मैं दाल पी रही हूँ या आई एम ड्रिंकिंग अ चासनी। सो दैट वॉज द गुजरात ट्रेट कि जब भी गुजरातीज दाल बनाते हैं, गुजरातीज कोई भी खाना बनाते हैं, तो इतनी सारी शक्कर होती है उसमें कि लगता नहीं है कि दाल पी रहे हो, आपको लगेगा कि किसी की किसी मिठाई की चासनी को पी रहे हो। सो वेल, दैट वॉज अ वेरी, आई थिंक वेन एवर दिस मूवी वॉज मेड, दे रियली मेड श्योर कि जो भी कल्चर है, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज शॉट इन अहमदाबाद फॉर मैनी सीन्स फॉर IIM, तो उस कल्चर को बहुत ही बखूबी से अच्छी तरह से दिखाया गया था। वैन ही गोज टू चेन्नई अपने अनन्या के परिवार को मिलने के लिए, सो चेन्नई के कल्चर को अच्छी तरह से दिखाया गया था, उनकी मम्मी को, यानी कि जो अर्जुन कपूर की मम्मी है, उनको भी, जो पंजाबी कल्चर की जो मम्मीज होती है उनको दिखाया गया था। तो इट वॉज वेरी वेल मेड मूवी। ऑफकोर्स कहानी तो अच्छी थी ही, लेकिन जिस तरह से डायरेक्शन अच्छी थी, एक्टिंग अच्छी थी, सबकी अदाकारी बहुत अच्छी रही थी, अनन्या के रूप में जो आलिया भट्ट को आपने देखा था, सो ऑल एंड ऑल इट वॉज अ बेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी, रोमांटिक मूवी रही थी, जिसका नाम था टू स्टेट्स। एक और कहानी आएंगी आपके लिए, लेकिन कौन सी कहानी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार।

आतिफ असलम जी की आवाज़ ऑन 104.9 FM वनेशा रेडियो, और आप सभी के ढेर सारे कॉल्स के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि तहे दिल से मैं आपसे बातें करने आती हूँ यहाँ, और जब आपके कॉल्स आते हैं तो बस इतनी ही तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करती हूँ। क्योंकि देखिए, कई रेडियो शोज़ की जब बात हो या संगीत की बात हो या 2 घंटे या 3 घंटे, जितना भी वक्त मुझे मिलता है यहाँ पर, मैं हमेशा यही मेरी कोशिश होती है कि आपके वक्त को हम ज़ाया ना करें। अगर आपने ट्यून इन किया है तो किसी वजह से ट्यून इन किया होगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे आप गाड़ी में हैं, घर पे, विथ दिस सोशल मीडिया ब्लास्ट एंड सो मेनी डिफरेंट एंटरटेनमेंट ऑप्शन, राइट? अगर आप हमें सुन रहे हैं अभी, आपका वक्त हमारे साथ बिता रहे हैं, तो कुछ आपके लिए भी, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके वक्त के लिए, तो बस वहीं ज़ाया ना करें और आपके वक्त को हम बिल्कुल म्यूजिकल बना दें। यही मेरी छोटी सी कोशिश एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM वनेशा रेडियो। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली काइंड कमेंट्स, क्योंकि आई थिंक यू ऑल आर वेरी काइंड। हमारी छोटी सी कोशिश को सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ऑन 104.9 FM वनेशा, मैं हूँ नीलम, आप ही के साथ।

0: तुमसे मिलकर ही तुमको बताना है जी, बिल्कुल मिलना तो पड़ेगा. सो ऋतिक रोशन, लेकिन हमें मिलते नहीं है ना ऋतिक रोशन, आजकल फिल्मों में दिखते नहीं है इतने. क्रिश 4 आने वाली है, लेकिन कब आने वाली है पता नहीं. अगर आप भी मेरी तरह ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फ़ैन हैं, देखिए ऋतिक रोशन के फ़ैन होने की बहुत सारी वजह हो सकती है. देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल रीजंस. किसी को उनकी डांसिंग स्किल्स पसंद होगी, किसी को उनके लुक्स पसंद होगे, किसी को उनकी अदाकारी पसंद होगी, एंड किसी को उनके चार्म पसंद होगे, एंड यू नो देर आर अगेन एज आई सेड मल्टीपल रीजंस. मुझे उनकी सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन पसंद है. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फिल्म, जब भी उनको पर्दे पर पहली बार देखा था, एंड इट वॉज सो एपरेंट कि उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है अपने रोल के लिए, एंड दैट्स वॉट ही डिड फॉर एवरी फिल्म. एंड मे बी दैट इज़ अ वेरी रीजन ही डिड नॉट डू मैनी मोर फिल्म्स. की ऐसा नहीं था कि मैं सुपरस्टार बन गया हूँ ओवरनाइट, तो अब बस 5-10 फिल्म हर साल आप मेरी देखेंगे. ही वॉज वेरी चूजी, एक ही फिल्म करते थे एक साल में, 2 साल में 3 साल में, कभी कभी एक बार नजर आते थे. एंड दैट इज़ हिज डेडिकेशन फॉर दैट एनी पर्टिकुलर रोल दैट ही वॉन्ट्स टू डू, ताकि पूरी शिद्दत के साथ वो काम कर पाए. एंड दैट्स वॉट ही डिड. सो आई रियली लव हिज सिंसेरिटी, डेडिकेशन, जो बहुत ही कम, वेरी रेयर इन अ गाइज. आई वुडंट से कि हर एक्टर ऐसे होते हैं. आमिर खान, यस आमिर खान इज़ ऑल्सो वेरी सिंसियर, लेकिन उनकी कुछ और अलग पर्सनैलिटी है. तो ये है बातें कुछ हमारे साथ, आपके साथ ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो. और ये बातें, ये गाने, तराने रहेंगे आप ही के साथ टिल 2 PM. कहीं मत जाइए.
1: मोमेंट्स डोंट फेड, दे एको लाइक अ मेलोडी दैट नेवर लीव्स यू. एंड इन दोस मोमेंट्स व्हाट यू वेयर बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट मेलोडी. वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डेलिस. PMJ ज्वेलर्स, timeless craftsmanship, unmatched elegance and stunning bridal collections, now in Main Street Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
2: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
1: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी.
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
8: Wait, इतना सब और price?
7: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
9: Main

0: hits is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Use code FUNASIA and get 30% discount.
4: Swag se karenge sabka swagat.
5: वेलकम बैक, दिस इज KCMP 104.9 FM FunAsia रेडियो पे. मैं हूं नीलम आपके साथ. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. एंड दिस पार्ट ऑफ अवर शो इज ब्रॉट यू बाय AG Fintechs. नंबर है उनका 4699429888 और यू कैन विजिट agfintechs.com. इंडिविजुअल्स के लिए और ऑल्सो फॉर बिजनेस. जी हाँ, चाहे आपका बिजनेस हो या आपके लिए आपके पर्सनल टैक्सेशन के लिए एक ही नाम, एंड दैट इज AG Fintechs. वंस अगेन, इट इज agfintechs.com. सेहत सबसे ज़रूरी चीज़ है अगर हमारी दुनिया में, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, तो दैट इज़ हेल्थ. गुड हेल्थ इज़ अ वेल्थ. तो बस इसके लिए आपको नाम एक दे देती हूँ, टेक्सास प्राइमरी केयर का. पिछले 13 सालों से आप सभी की सेवा में, हमारी पूरी कम्युनिटी की सेवा में. ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टिल 8 PM. अब है उनका दूसरा लोकेशन इंट्रोड्यूसिंग ल्यूनक्सी मेडिकल, एंड दिस इज फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. दैट इज़ वंस अगेन डॉक्टर मनदीप आचार्य. नंबर है उनका, अगर आप उनको कॉल करना चाहे, दैट इज टेक्सास प्राइमरी केयर, विच आई डोंट हैव इट हियर, बट आप उनको बिल्कुल फ्रिस्को में लोकेटेड है वो, 8 AM टिल 8 PM. आज है फिल्मी कहानी का सेगमेंट. अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो वेल, कुछ मिले जुले गाने कहानियां आपको बता रही हूं, और उसी के साथ जो कहानी आपको मैं बताती हूं, सुनवाती हूं, उससे आपको फिल्म का नाम पहचाना होता है. तो चलिए पहले गीत सुन लेते हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक और कहानी जिससे पहचानेंगे आप फिल्म का नाम. लेकिन ये गीत बहुत ही खूबसूरती से श्रेया घोषाल और उनके साथ शंकर महादेवन की आवाज़ में, जो आपने शायद कम सुना होगा, लेकिन जो कम सुनते हैं वही मेरे शो में आप सुनते हैं एवरी वीकेंड.

0: शंकर महादेवन की आवाज़ में उनके साथ ही श्रेया घोषाल, तेरे नाना, फ्रॉम द फिल्म चांदनी चौक टू चाइना। आप सोचेंगे यार ऐसी फिल्म बनी थी? बिल्कुल बनी थी, जिसमें दीपिका पादुकोण थी और उनके साथ थे अक्षय कुमार। कितनी बढ़िया बात है ना, इतनी बढ़िया स्टार कास्ट। फिल्म का नाम था चांदनी चौक टू चाइना एंड ऐसी ही कुछ कहानी थी कि दिल्ली के लड़के चांदनी चौक से चाइना पहुंच जाते हैं एंड क्या होता है, एंड इट वाज अ डिज़ास्टर फिल्म। हालांकि मैंने जैसे कहा कि गीत बहुत ही खूबसूरत गीत था और कुछ गाने ऐसे होते हैं कि फिल्म कैसे भी हो गाने हमारे दिल में बस जाते हैं। जो गाने आप शायद कम सुनते हैं लेकिन अगर सुरीले हो गए तो बिल्कुल मेरे साथ सुनेंगे हर वीकेंड में ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो। और कहानी आज मैं आपको अगली जो लाई हूँ, जो आपको सुनवाने जा रही हूँ और आप सुनेंगे, तो उससे आपको कहानी से फिल्म का नाम बताना है। ठीक है, तैयार है आप सभी? तो कहानी है गुजरात के, जो गुजरात में एज यू नो कि दारूबंदी है अभी भी। यस इट इज़, इवन दो आप एज अ विजिटर, आई बिलीव एज यू इफ यू गो फ्रॉम हियर, इफ़ यू हैव अ पासपोर्ट, दे डू हैव सर्टन लूप हॉल्स फॉर दैट। बट एनी वे, वो कहानी नहीं है मेरी, फिल्मी कहानी है। सो गुजरात में शराब का धंधा इज़ नॉट अलाउड, तो ये कहानी उसी के लिए है। गुजरात में शराब के धंधे में फंसे हुए अपना राज चलाते हैं और एक बहुत ही शातिर लेकिन दरिया दिल इंसान है, डॉन है वो, जिनका नाम है रईस आलम। रईस अपनी चालाकी से, हिम्मत से ये पूरी ही अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह है गुजरात में। अब उनकी ज़िंदगी में तूफान आ जाता है जब उनका सामना होता है एक बेहद ईमानदार और सख्त पुलिस ऑफिसर से, जो जिनका नाम है जयदीप मजूमदार। और मजूमदार ने ये कसम खाई होती है कि मैं कुछ भी करके रईस के साम्राज्य को तबाह कर दूंगा। बस ये उनकी होती है, एक ही उनका गोल है, उनकी ज़िंदगी का लक्ष्य बन जाता है मजूमदार का, कि रईस ने ये जो शराब के धंधे को पूरे गुजरात में फैला के रखा है, उनके इस अवैध धंधे को, साम्राज्य को मैं तबाह कर दूंगा। तो ये कानून और अपराध के बीच की लड़ाई है जिसमें कुछ प्यार और मोहब्बत का भी एलिमेंट है। रईस के साथ ज़िंदगी में उनकी जो पत्नी है, उनके साथ जो प्यार है, मोहब्बत है, उसकी भी कुछ बातें हैं, लेकिन असली लड़ाई है कानून के बीच में और अपराध के बीच में, रईस आलम के बीच में और इंस्पेक्टर मजूमदार के बीच में। तो कौन सी है ये कहानी, बताएंगे मुझे आप 9722355555। गुजरात की कहानी, रईस आलम की कहानी एंड इंस्पेक्टर मजूमदार की कहानी, बताएंगे मुझे आप। एंड आई नो इट कुड बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन कोशिश कीजिए, याद कीजिए कैसी कौन सी हमारी फिल्मी कहानी है। एंड फनीशा, योर नेम है? हेलो, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, इफ़ यू कैन बी लिटिल बिट लाउडर प्लीज।
1: Can you hear me now?
0: Yes, yes, absolutely, ma'am. बहुत ही clearly, बताइए।
1: The name of the movie is Rais.
0: Rais है जी, बिल्कुल। आपने देखी थी शाहरुख खान की ये फिल्म?
1: Yes, with Mayra Khan.
0: Aye, aye. आपको अच्छी लगी थी? शाहरुख खान के फैन है आप?
1: शाहरुख खान की biggest fan.
0: Biggest fan. तो कोई भी मूवी तो देखनी है, अगर नहीं देखी तो शाहरुख खान को बुरा लग जाएगा, है ना?
1: Exactly, दिल टूट जाएगा.
0: दिल टूट जाएगा. आपका नाम क्या है?
1: रोजीना
0: ने मूवी नहीं देखी तो शाहरुख खान का दिन खत्म नहीं होगा, उनको लगेगा कि यार मूवी में काम करने का मतलब क्या अगर रोजीना ने देखी नहीं मेरी।
1: आई
0: नो राइट, आप ही के लिए, आपके दिल के लिए उनकी सारी अदाएं है। फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो,
2: हेलो,
0: यस सर, बताइए।
2: आपने कहानी में ही नाम बता दिया है।
0: हाँ, कहानी में उनका नाम है रईस आलम, रईस की है ये कहानी। जी सर जी, आपने देखी है फिल्म?
2: बहुत बार देखी,
0: बहुत बार। आप कहाँ से है इंडिया में, गुजरात कहाँ से आप सर?
2: एक्चुअली मैं गुजरात से, तो मैं बोर्न हुआ हूँ अफ्रीका में।
0: हाँ,
2: ज़ंज़ीबार, तंजानिया में।
0: ज़ंज़ीबार में, ओके सर।
2: और मैं गुजरात बोलूँ तो जामनगर, जाम
0: खंभाड़िया से। ऑल राइट सर, आई एम ऑल्सो गुजराती बट नॉट बीन इन गुजरात, आई एम इन ओनली इन महाराष्ट्र, मुंबई।
2: आप महाराष्ट्र में, मैं अफ्रीका में, बहुत ही अफ्रीका में हुआ हूँ।
0: वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड लास्ट कॉलर, बताइए क्या है आपका जवाब।
3: हेलो,
0: यस सर, बताइए।
3: हाँ, ये रईस की कहानी है।
0: रईस की कहानी है सर, बिल्कुल। आपको पसंद आई थी ये फिल्म?
3: हाँ, मैंने क्योंकि हम लोग तो वो रईस से दारू लेके पीते रहे, मैं खुद अहमदाबाद का ही हूँ।
0: अच्छा, आप अहमदाबाद के? वंडरफुल, वंडरफुल। आप मिले थे इस शख्स को?
3: हाँ मिला भी था, उनके सब फोल्डर थे उससे भी मिलते थे, तो वो जो उनका खौफ इतना था या पुलिस में उनका इतना सेटलमेंट था कि आप हम लोग उस टाइम पे तो हमारे पास छोटा सा स्कूटर हुआ करता था, तो स्कूटर की डेकी में अगर दारू की बोतल पकड़ ले वो पुलिस वाले तो हमको सिर्फ उनका नाम ही बोलना होता था कि भाई वहाँ से लेके आया हूँ।
0: तो एंड दिस इज अबाउट 70s, वो कौन से साल की बात है, 70s या 80s की?
3: नहीं 80s की है,
0: 80s की बात थी, बट अब तो वो हयात नहीं है, राइट? आई थिंक उनकी मौत हो चुकी है।
3: नहीं, वो उनका मर्डर भी हमारे यहाँ ही हुआ, अहमदाबाद में ही,
0: अहमदाबाद
3: पुलिस का एनकाउंटर भी वहीं पे हुआ।
0: राइट। एंड शाहरुख खान डिड वेरी गुड जॉब इन दिस फिल्म डिपिक्टिंग दैट कैरेक्टर, वेरी गुड जॉब सर।
3: हाँ
0: जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। रईस आलम की कहानी, और रईस आलम का किरदार निभाया था शाहरुख खान एज अ डॉन इन दिस फिल्म।

कितने दफे दिल ने कहा, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना मोहित चौहान की आवाज में, तनु वेड्स मनु। और अक्सर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये देखा गया है कि अगर एक फिल्म, एक बात अगर बहुत ही हिट हो जाती है, लोगों को पसंद आती है, वो कहानी कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स होते हैं सोचते हैं कि भाई चलिए ये जो पॉपुलैरिटी मिली है, प्यार मिला है, उसका एक बार और फायदा लिया जाए, राइट। एंड देन दे ट्राई टू मेक अ फ्रेंचाइज, पार्ट टू बना देते हैं, पार्ट थ्री बना देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो बात पहली फिल्म में होती है, जो बात पहली बार दिखाई जाती है, उसके बाद अगर वो पार्ट टू पार्ट थ्री लाते हैं तो वो मज़ा नहीं रहता। जैसे कि तनु वेड्स मनु टू आई थी, आई थ्री आई थी, आई डोंट रिमेम्बर, राइट, थ्री भी आई थी। सो सेकंड थर्ड एंड देन लगता है कि बस कहीं ना कहीं बस कुछ पैच वर्क दिया जाता है, कहानी में कुछ दम भी ना हो, ड्रैग किया जाता है। सो तनु वेड्स मनु, एज आई सेड, द पार्ट वन वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल फिल्म, बहुत ही अच्छी तरह से। एंड माधवन, वेरी क्यूट माधवन, उनके सामने कंगना थी, कंगना की भी जोड़ी अच्छी लग रही थी, जिमी शेरगिल थे एक रोल में। तो इन ऑल ऑल एंड ऑल फिल्म वॉज वेरी गुड। लेकिन बाद में पार्ट टू आई एंड आई डोंट रियली थिंक इट पार्ट थ्री आई थी, लेकिन फिर भी वो पार्ट टू में वो बात नहीं थी। चलिए पार्ट वन हो या टू हो, लेकिन अगर गाने अच्छे हो गए तो आप सुनेंगे मेरे साथ एवरी वीकेंड।

तू शेरी ना हो तो क्या फरहाद हमको कर दो, क्या बात है भाई। शेरी आप बने ना बने, हम तो फरहाद बन जाएंगे। फनीशा रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर सैटरडे आफ्टरनून। अभी एक और घंटा आपके साथ रहूंगी, जी हाँ 2 से 3 के बीच में, लेकिन उसमें मुलाकातें होती है, जो बातें होती है वो होती है कम्युनिटी के हवाले से, कम्युनिटी राउंड अप, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं कुछ इवेंट्स की जानकारी, नॉन प्रॉफिट इवेंट्स, सोशल इवेंट्स की जानकारी। उसी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि। तो बने रहिए हमारे साथ आप ही के फनीशा रेडियो पे।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
8: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
8: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट।
9: इस शहर को हुआ क्या, कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं, क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
11: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिजल्ट्स में वेरी।
12: भूख लगी, जोरों की भूख लगी।
13: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
14: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एंबियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली

0: वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

दिस इज केजीएमबी 104.9 एफएम फनीशा रेडियो पे सुन रहे आप मुझे यानी नीलम को और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ टिल 3 PM एंड इट इज अ कम्युनिटी राउंड अप। आप ही की सेवा में प्रस्तुत करते हैं हम ये कार्यक्रम आप ही के लिए और आप ही से बनता है ये कार्यक्रम जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप। और जैसे कि हम आपको हर हफ्ते बताते हैं आपके लिए बहुत सारे इवेंट्स की जानकारी, एक्टिविटीज़ की जानकारी और ये सारी जानकारी हम आपके लिए लाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ टिल 3 PM। कार्यक्रम के दौरान आप ही के लिए कुछ पैट्रियोटिक, इंस्पिरेशनल, स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल गाने और इस सारे गानों के साथ रहती है बहुत सारी इवेंट्स की जानकारी। और हमारे साथ जुड़ते हैं हर शनिवार की दोपहर किसी भी सामाजिक या धार्मिक संस्था के प्रतिनिधि ऑन 104.9 FM। A free platform for the entire community brought to you by our CEO Vaishali Thakkar.

0: बहुत ही खूबसूरत ये हिंदी फिल्म से लिया हुआ भजन हम आप बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलते हैं एक सुंदर कांड, एक ऐसा इवेंट आ रहा है बाय अतुल पुरोहित हैपनिंग एट DFW हिंदू टेम्पल, जिसकी जानकारी हमें देंगे DFW हिंदू टेम्पल के ही प्रेस्ट धवल जी, जिनसे हम करेंगे कुछ बातचीत और हमें भी जानकारी देंगे कि किन दिन ये आ रहा है अतुल पुरोहित जी हमें सुनाने डिवाइन सुंदरकांड ऑफ हनुमान जी। धवल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नमस्कार, जय श्री कृष्णा एंड दिस इज वनेशा रेडियो।
1: नमस्ते नीलम जी,
0: जी नमस्ते,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद सर आपका। जी बिल्कुल महाराज जी, सो पहले हमें ये बताइए कि सुंदरकांड जो होने जा रहा है वो किस दिन है और कहाँ पर है।
1: हाँ जी, ये सुंदरकांड जो है वो हमारे DFW अरविंद में एकता टेम्पल है वहाँ पे
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: और हमारे कल्चरल हॉल में है, और
0: जी
1: ये सैटरडे को July 25 2026
0: जी
1: 25 को है
0: जी जी
1: और उसका टाइम है 5 बजे से शुरू होगा, और उसके बाद प्रसाद का भी आयोजन है
0: जी।
1: तो आपके सभी श्रोता और आपको भी और फनेशिया का पूरा परिवार DFW हिंदू टेम्पल की ओर से और पूरी कमेटी की ओर से, पूरे मंदिर के ओर से सभी आपके श्रोता को हम प्रेम से और आदर से निमंत्रित करते हैं कि आप आइए,
0: जी
1: हम
0: जी
1: निमंत्रण दे रहे हैं, माने आपका वहाँ पे स्वागत है और आप लाभ लीजिए। भगवान हनुमान जी है वो कलयुग में चिरंजीव देव है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो साक्षात सब देने वाले हैं,
0: जी
1: वीर ऐश्वर्य सब देने वाले हैं, तो आपके बच्चे को भी यदि आप पॉजिटिव एनर्जी देना चाहते हैं, आपके घर में ओल्ड है तो बुजुर्गों को भी आपको एनर्जी देना है, और यंग के लिए भी, माना सबके लिए ये मौका एकदम बढ़िया है, तो आप प्लीज लाभ लीजिए और आनंद से भगवान हनुमान जी को सुंदरकांड के पाठ के द्वारा प्रसन्न करिए।
0: बहुत बहुत बढ़िया, और जैसे कि आपने कहा कि हनुमान जी साक्षात चिरंजीवी है, 7 चिरंजीवी में से एक है हनुमान जी आज के कलयुग में, और सुंदरकांड उन्हें बहुत पसंद है। आप जहाँ जहाँ भी सुंदरकांड का पाठ होता है हनुमान जी वहाँ साक्षात होते, क्योंकि रामायण में जो अध्याय है सुंदरकांड एक कांड है पूरा, वो एक पूरी हनुमान जी की वीर गाथा है कि किस तरह से उन्होंने श्रीलंका जाके जहाँ पर सीता जी को लिए रखा गया था, अपनी सीता जी को उन्होंने राम जी की जो अंगूठी दी थी, वो सारी जो कथा है वो है सुंदरकांड में। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अतुल पुरोहित इज़ अ वेरी ग्रेट सिंगर एज वेल, जिन्हें आप अक्सर गुजराती गरबा या दांडिया में सुनते हैं, लेकिन वो सुंदरकांड भी बहुत ही अच्छी तरह से गाते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच धवल महाराज जी आपका यहाँ पर आने के लिए, और आपके मुख से भी हमने बहुत अच्छे अच्छे भजन सुने हैं मंदिर में, तो बस आप ऐसे ही गाते रहिए, मंदिर में सेवा देते रहिए और हमें ऐसी जानकारी देते रहिए।
1: थैंक यू नीलम बेन, आपके सभी श्रोताओं का खूब खूब आभार, थैंक यू, धन्यवाद।
0: जी बिल्कुल धन्यवाद, और आप सब से हम दर्शन करेंगे ऑन 25th ऑफ जुलाई एट DFW हिंदू टेम्पल। धन्यवाद धवल जी,
1: धन्यवाद।
0: फनीशा रेडियो पे मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ हर शनिवार की दोपहर, और ये कार्यक्रम हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए प्रस्तुत करती है, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं बहुत सारे इवेंट्स की जानकारी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज ड्यूरिंग दिस आवर।

आशा जी, जी हाँ, आशा जी के साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ उषा मंगेशकर की, साचा नाम तेरा, स्पिरिचुअल बातें हैं, इंस्पिरेशन बातें, मोटिवेशन बातें, और इन बातों के साथ बहुत सारे इवेंट्स की जानकारी इसी कार्यक्रम के दौरान, जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप। सीनियर मिलन सोसाइटी, जी हाँ, वैष्णव मिलन ऑफ टेक्सास प्रेजेंट सीनियर मिलन ऑफ सोसाइटी, एंड दिस इज हैपनिंग सैटरडे जुलाई 18 बिटवीन 11 AM एंड टिल 1 PM, वंस अगेन दैट इज 18th ऑफ जुलाई 11 से 1 के बीच में। श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर प्रस्तुत करते हैं श्री गोकुलनाथ जी विवाह उत्सव, जो है इट्स ऑलरेडी डन, आई थिंक इट वाज द लास्ट वीकेंड। और सुंदरकांड की अभी आपने जानकारी ली, तो एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, श्री अतुल पुरोहित जी लाते हैं आपके लिए सुंदरकांड पाठ, एंड इट इज हैपनिंग ऑन सैटरडे जुलाई 25th एट DFW हिंदू टेम्पल सोसाइटी। Once again, it is happening at DFW Hindu Temple Society, and for more information, you can log on to dfwhindutemple.org. और जब कम्युनिटी की अनाउंसमेंट होती है, तो अभी अभी हमारे एक कम्युनिटी मेंबर, कम्युनिटी लिसनर्स ने हमें फोन करके बताया कि 7-Eleven की 60th एनिवर्सरी है आज, और इसी खुशी के मौके पर उनके जो ओनर्स है, फ्रेंचाइज के ओनर मनु भाई, उन्होंने कहा कि आप अगर प्लेनो के या लुइसविल के लोकेशन और एनी अदर लोकेशन ऑफ 7-Eleven अगर आज जाएंगे, आपको फ्री स्लर्पी मिलेगी, और इसी 60th एनिवर्सरी के मौके पर आपके गैस को भी 50 सेंट्स डिस्काउंट है भाई। तो ये हमें जानकारी दी हमारे ही एक लिसनर ने, मनु भाई ने खुद कॉल किया था, और जो है खुद इन सारी फ्रेंचाइज के ओनर, तो उन्होंने कहा कि आज है बहुत ही अच्छा मौका हमारे लिए, हमारी फ्रेंचाइजी के लिए, 7-Eleven के लिए। तो प्लीज़ आपके कम्युनिटी लिसनर्स को बताइएगा कि आइए और फ्री सेलरपी एंजॉय कीजिए, तो ज़रूर जाइएगा। एंड दिस इज़ कम्युनिटी राउंड अप विथ मी योर होस्ट नीलम। ये कार्यक्रम मैं नीलम प्रस्तुत करती हूँ आपके लिए हर शनिवार के दोपहर।

0: और चलते हैं अगले इवेंट की तरफ, और अगले इवेंट की जानकारी हमें देंगे अभिषेक जी एंड हु इज फ्रॉम DFW हिंदू टेंपल, जो गीता परीक्षा, जी हाँ, एक नया कंसेप्ट जो मैंने पहली बार सुना होने जा रहा है एट DFW हिंदू टेंपल एंड ऑल्सो इन DFW डैलस फोर्ट वर्थ में, उसकी जानकारी हम लेंगे अभिषेक भाई से. अभिषेक भाई, दिस इज फनीशा रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. जय श्री कृष्ण सर. तो बताइए क्या हो रही है ये बातें फॉर गीता परीक्षा जो पहली बार शायद हम सुन रहे हैपनिंग इन डैलस फोर्ट वर्थ.
1: तो ये हम एक कंपटीशन लेके आ रहे हैं अपने शहर में, बिजनेस इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका.
0: जी जी.
1: तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट, दे हैव बीन ट्राइंग इट इन डिफरेंट सिटीज अक्रॉस द यूएस.
0: जी.
1: तो दिस इज गीता के बेस पे एक कॉम्पिटिशन है विच इज फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स. तो इसमें एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल, हाई स्कूल, इवन एडल्ट्स भी, दे कैन कम्पीट एंड दे कैन विन वेरी हैंडसम प्राइजेस.
0: ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल. सो फॉर ऑल एज कैटेगरीज, ऐसी जरूरी बात नहीं कि स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग किड्स के लिए है, यू हैव डिफरेंट कैटेगरीज फॉर स्कूल, कॉलेज एज वेल एज फॉर द एडल्ट्स, राइट?
1: सो द आइडिया इज कि हम सब भगवद गीता पढ़ते हैं, इसमें इतनी ज्यादा प्रोफाउंड नॉलेज छिपी हुई है, बट उसको एप्लीकेशन पे लाना हम सबको चाहिए. सो दैट इज वॉट वी आर प्रमोटिंग, दैट हमारे बच्चे, हमारे अडल्ट, वेन दे स्टडी भगवद गीता मोर एंड मोर,
0: it
1: will improve their own personal lives, their relations, their handling of situations. Jo sthit pragya jo kehte hai na ki that determination and that consolidation of your thoughts, wo hume Bhagavad Gita padhne se aata hai, uska ek humne competition sa banaya hai.
0: Very good, very good. So if you can please give us more details for the timings and where to register.
1: Hadi, so this is going to be a competition on July 26th. ये DFW हिंदू टेम्पल एकता मंदिर अरविंद में होस्ट होगा फ्रॉम 10 टू 4 PM.
0: जी.
1: फॉर रजिस्ट्रेशन वी कैन सिंपली गो टू इधर DFW हिंदू टेम्पल.org, उसमें विद्या विकास स्कूल सेक्शन में जाके वी कैन रजिस्टर, और वी कैन सिंपली गो टू bit.ly.com/BGPDFW.
0: वंडरफुल वंडरफुल. तो DFW हिंदू टेम्पल की वेबसाइट पे भी ये सारी जानकारी और ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी.
1: ये सारी, और सिंपली somebody can go to hua.edu, जो हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका है, तो hua.edu/BGP, भगवत गीता परीक्षा BGP. तो ये दो तीन तरह से जाके हम बेसिकली प्रमोट करेंगे कि रजिस्टर करें बच्चे एंड अडल्ट. वी विल सेंड देम अ पैकेज दैट हाउ टू प्रिपेयर. बच्चों के लिए जो एलिमेंट्री स्कूल है उनके लिए सिर्फ चैंटिंग बेसिस रखते हैं हम, बट फॉर मिडिल स्कूल एंड अप उनके लिए देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड देन देयर विल बी स्पेलिंग बी टाइप. एक फाइनलिस्ट राउंड होगा जिसमें जजेस विल बी आस्किंग क्वेश्चंस, एवरीबॉडी कैन लर्न एंड लिसन टू दोस क्वेश्चंस, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग.
0: वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट कंसेप्ट. आई एम श्योर इट्स अ समर वेकेशन, सो पेरेंट्स के लिए भी हमेशा एक चिंता रहती है, फिकर रहती है कि बच्चों को कैसे एंगेज रखें, एंड दिस इज अ वेरी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन दे कैन हैव विद देयर किड्स एंड टू हैव अ मीनिंगफुल एजुकेशन जो अपनी जिंदगी में भी उनको, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज जो 12 चैप्टर्स है हमारे, 15 चैप्टर्स है गीता के, वो हमारे हर श्लोक को हम पढ़ते हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें, प्रैक्टिस में कैसे लाए अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ. तो बच्चों से लेके पेरेंट्स तक के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है जहाँ पर आप जा सकते हैं और ये गीता परीक्षा दे सकते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अभिषेक भाई, एंड टू द एंटायर टीम एंड एंटायर कमिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड हैविंग दिस वंडरफुल कॉन्सेप्ट फॉर एंटायर कम्युनिटी.
1: थैंक यू वेरी मच नीलम बेन फॉर प्रमोटिंग दिस गीता परीक्षा.
0: एनी टाइम सर, एंड गुड लक टू यू, एंड अगेन एज आई सेड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, सो गुड लक टू यू एंड टू योर एंटायर टीम.
1: वेरी मच, थैंक यू.
0: थैंक यू सर.
2: प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आन वान शान याक

करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है।

जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई हवस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है।

वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

आरंभ है प्रचंड और 104.9 एफएम फनेशा रेडियो, और ये कार्यक्रम है आप ही के लिए जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप विथ मी और होस्ट नीलम, एंड इट इज़ ब्रॉट टू बाय अवर सीईओ वैशाली ठक्कर, अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके जो भी इवेंट्स है, आपके जो भी कार्यक्रम है, जिसकी सारी जानकारी हम देंगे हमारे श्रोता तक, हमारी पूरी कम्युनिटी को, इसी कार्यक्रम के दौरान एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज ड्यूरिंग दिस आवर एवरी सैटरडे, एंड इट इज़ ब्रॉट टू बाय अवर सीईओ वैशाली ठक्कर। श्री डॉक्टर द्वारकेश लाल जी महोदय श्री होगे इन डैलस फ्रॉम अगस्त 26 टिल 29, एंड इट इज ब्रॉट यू बाय वैष्णव संघ ऑफ डैलस, एंड अगस्त 29 दे आर हैविंग अ कल्चर फेस्टिवल, वंस अगेन दैट इज सैटरडे अगस्त 29, और ये जो यमुना गुणगान महोत्सव है आपके लिए 26 टिल 29th ऑफ अगस्त, एंड ये होने जा रहा है बाय वैष्णव संघ ऑफ डैलस। DFW हिंदू टेम्पल में जैसे कि हमने कहा 25th ऑफ जुलाई इस सुंदरकांड व्यातुल पुरोहित, एंड ऑल्सो 26th ऑफ जुलाई इट इज गीता परीक्षा। मीट एंड ग्रीट श्री रघुनंदन राव जी, एंड दिस इज अ बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जहां पर आप मिल सकते हैं उन्हें संडे जुलाई 12th टुमारो एट 3 PM, एंड दिस इज हैपनिंग एट काकेत्या बैंक्वेट इन लुइसविल टेक्सास। वंस अगेन इट इज मीट एंड ग्रीट श्री रघुनंदन राव जी, बीजेपी मेंबर। INT प्रस्तुत करते हैं 49th आनंद बाजार, एंड इट इज हैपनिंग इन फ्रिस्को 2 PM ऑनवर्ड। राधा कृष्ण टेम्पल सीनियर क्लब मीट, एंड इट इज हैपनिंग ऑन सैटरडे जुलाई 25th, वंस अगेन 4 PM टिल 7 PM सीनियर क्लब मीट एट राधा कृष्ण टेम्पल। नेक्स्ट सैटरडे दैट इज 19th ऑफ जुलाई विवायो श्रीनाथधाम हवेली इन कोपल टेक्सास इज हैविंग अ रथ यात्रा सेलिब्रेशन 4 PM ऑनवर्ड, दैट इज श्री कोपल टेक्सास में विवायो श्रीनाथधाम हवेली रथ यात्रा सेलिब्रेशन आफ्टर 4 PM। रथ यात्रा सेलिब्रेशन हैपनिंग इन मैनी मोड एट मैनी मोड टेम्पल्स इंक्लूडिंग DFW हिंदू टेम्पल। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम की जानकारी हम आपको देते रहेंगे ड्यूरिंग दिस आवर ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो। सुनते रहिए आपका हमारा सभी का ये कार्यक्रम हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM।

0: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
1: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
15: And welcome back. This is KCMP 104.9 FM Fun Asia Radio पे मैं हूँ आपके साथ। ये कार्यक्रम जो आप सुन रहे हैं अभी आप ही के लिए है, आप ही से बना है, जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप। कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे इवेंट्स, एक्टिविटीज की जानकारी और हमारे साथ जुड़ते हैं किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि एवरी सैटरडे टिल 3 PM। If you are looking to buy, sell or relocate in DFW, तो चलिए मैं आपको एक नाम दे देती हूँ, नवनीता खेमका विद कैलर विलियम्स रियल्टी, जो आपको बिल्कुल गाइड करेगी एंड विद वेरी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड जेन्युइन केयर। नंबर है नवनीता का 347-449-4242। जी बिल्कुल वही नवनीता जिनको आप सुनते हैं आप ही के फन एशिया रेडियो पे एवरी फ्राइडे। अब वो लेकर आई है कैलर विलियम्स की तरफ से रियल्टी एंड रियल्टर सर्विसेज। वंस अगेन इट इज नवनीता खेमका।
16: Thank you.
15: कल है 12 जुलाई, तो आप बोलेंगे कि क्या है भाई खास, तो खास ये है कि विशाल एंड शेखर हो गए लाइव यहाँ पे, ब्रिंगिंग योर ओन प्लेलिस्ट, आपके जितने भी पसंदीदा गाने हैं उनके संगीत में सजे हुए, उनकी आवाज में आपने सुने होंगे वो सारे गाने आप सुन सकेंगे लाइव, जी हाँ, 12th of July विच इज टुमारो, कर्टिस कलवल सेंटर गार्लैंड में। टिकट्स के लिए यू कैन लॉग ऑन टू cashpatelproductions.com, अगर आप मेंशन करें फन एशिया का यू कैन गेट 30% डिस्काउंट। Once again, that is tomorrow, Curtis Culver Center in Garland, and it is Vishal and Shekhar live. और ये कार्यक्रम जो अभी आप सुन रहे हैं ये है कम्युनिटी के लिए, जी हाँ, आप ही के लिए, आप ही से बना है ये कार्यक्रम, हर शनिवार की दोपहर till 3 PM on 104.9 FM.

0: मोटिवेशनल बात हो, इंस्पिरेशनल बात हो या स्पिरिचुअल, ये सारे गाने सारी बातें सुनेंगे आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के दौरान ऑन 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। जब मोटिवेशनल की बात निकली है, एकल फाउंडेशन, जो एकल फाउंडेशन के एनुअल फंड रेजिंग इवेंट की आपको जानकारी दे दूँ, प्लीज़ डू विजिट दैट फाउंडेशन वेबसाइट। एंड द फंड रेजिंग इवेंट इज हैपनिंग ऑन August 28, कथक ऑन द सिल्वर स्क्रीन एट द गार्लैंड ग्रेनविल आर्ट सेंटर। तो आप ज़रूर जाइएगा ग्रेनविल आर्ट सेंटर में, गार्लैंड में, एंड दैट इज एकल फाउंडेशन के एनुअल इवेंट में, इट्स एनुअल फंड रेजिंग इवेंट। उसी के साथ दीप यज्ञ हो रहा है यहाँ डैलस में ऑन 14th of July, जिसकी जानकारी हमें देंगे AWGP, जी हाँ, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधि जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे करेंगे हम कुछ बातचीत फॉर द अपकमिंग 14th of July इवेंट दीप यज्ञ। जयप्रकाश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, एंड यू आर लाइव ऑन फनीशा रेडियो।
1: थैंक यू नीलम जी, नमस्ते।
0: नमस्कार।
1: एंड नमस्ते टू ऑल द फनीशिया लिसनर्स।
0: जी बिल्कुल सर।
1: एंड थैंक यू नीलम जी फॉर ब्रिंगिंग मी इन। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इवेंट है एक स्पिरिचुअल इवेंट, ए डिवाइन इवेंट, एक आध्यात्मिक हम इवेंट करने जा रहे हैं 14th of July को।
0: जी जी।
1: और ये है वर्किंग डे है, थोड़ा सा इसमें है चैलेंज, बट सम टाइम फॉर गुड थिंग वी हैव टू टेक आउट टाइम,
0: ऑफ कोर्स, क्योंकि हम मूवी देखने के लिए भी जाते हैं, राइट? सेफ इट इज अ गुड मूवी, वी डू गो ऑन आउट ऑन अ वर्किंग नाइट। सो जो अच्छी बात, स्पिरिचुअल बातों के लिए भी हम बिल्कुल वक्त निकाल सकते हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज के समय में जब हम बहुत कठिन समस्याओं से जूझ रहे हैं,
0: जी सर,
1: घर के अंदर, बाहर, समाज में, नेबरहुड में, और पता नहीं कहाँ कहाँ, तो इस समय बहुत ये जरूरी हो जाता है कि हम इस तरह के आध्यात्मिक इवेंट में भाग लें और वहाँ से कुछ सीख कर आए।
0: हाँ।
1: हमारे जो संत हैं, हमारे प्रोफेसर भटनागर जी हैं, जो शांति कुंज के संत हैं, इतने मीलों दूरों की यात्रा करके वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके साथ श्री ओमकार पाटीदार जी भी आ रहे हैं।
0: जी, जी।
1: और ये बड़े पहुंचे हुए संत हैं और बड़े वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को प्रतिपादित करने वाले संत हैं।
0: जी, जी,
1: तो आइए मैं सभी को कहूंगा, आपके माध्यम से फनीशिया के लिसनर्स को ये बताना चाहूंगा कि आइए इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाइए। शायद ये एक घंटे का प्रोग्राम आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि इतनी कठिन परेशानियां से हम गुजर रहे हैं आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में, बच्चे हो या कोई भी एज ग्रुप के हो, देर आर ऑलवेज सम स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, तब अगर ऐसे मौके आपको मिलते हैं जहां पर साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली यू कैन कनेक्ट टू द गॉड, तो बिल्कुल गवाहियां का मत। इफ देयर एनी वेबसाइट सर और एनी इंफॉर्मेशन दैट वी कैन गिव इट टू द कम्युनिटी, ताकि वो ज्यादा इस बात के लिए जानकारी ले पाए।
1: जी बिल्कुल। तो पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि एब्सोल्युटली फ्री इवेंट है।
0: जी जी।
1: कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं है इसमें, तो फ्री इवेंट है। उसके बाद इवेंट के बाद में हमारा महाप्रसाद भी है, तो जो भी दीप यज्ञ के बाद प्रसाद होता है प्रसाद की व्यवस्था है।
0: जी जी।
1: तो आप इसमें सम्मिलित होइए। और इसका जो इवेंट का जो वेबसाइट है, आप AWGPDFW.org पे जा सकते हैं।
0: जी जी।
1: AWGPDFW.org और उसके अंदर इवेंट में आप जाएंगे और इवेंट में आपको ये सारी जानकारियां वहां पर मिल जाएगी जो 14th of July।
0: Once again, that is awgpdallas.org. That is the free event happening on 14th of July. आप जो बिल्कुल AWGP, that is अखिल विश्व गायत्री परिवार की वेबसाइट पे लॉग ऑन कर सकते हैं। आप डैलस की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इवेंट्स कैटेगरी में आपको इस इवेंट की ज़्यादा जानकारी मिल पाएंगी। एंड इन फोन नंबर जयप्रकाश भाई, अगर आप कोई फोन नंबर भी शेयर करना चाहे ताकि किसी को कॉल करनी हो तो।
1: तो फोन नंबर आप नोट कर सकते हैं 908-251-2799।
0: जी जी।
1: और दूसरा और नंबर है 469-586-6568।
0: वंडरफुल वंडरफुल। तो आपके पास है दो नंबर्स एंड वन वेबसाइट। वंस अगेन द वेबसाइट इज awgpdallas.org। बहुत बहुत एक बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं।
1: हाँ हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, थोड़ा सा सुधार इसमें, awgpdfw.org
0: और DFW, नॉट डालस। ओके, awgpdfw.org है, नॉट डालस। सो आप awgpdfw, दैट इज डालस फुटवर्ड के लिए, dfw.org। और कोई और जानकारी आप देना चाहे इस संत के लिए कि कितने दिन रहने वाले हैं डालस फुटवर्ड में, अगर किसी को उनको निमंत्रित करना हो तो क्या वो भी आप जानकारी दे पाएंगे?
1: जी जी। तो पहली बात मैं दो सेकेंड लूंगा इसमें.
0: जी सर,
1: तो गायत्री परिवार जो है एक संस्था है, जो सामाजिक संस्था है, जो वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को प्रतिपादित करती है. वी इनकरेज दी साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी तो कई तरह की होती है. आप भगवान के सामने जाते हैं, सिर झुकाते हैं, एक अपनी श्रद्धा विश्वास और जो भी है.
0: जी,
1: लेकिन हम आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे कन्विंस करें कि सही में जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, वो कितना विज्ञान सम्मत है. आध्यात्मिक तो एक पास हो गया, लेकिन विज्ञान भी उसके साथ में होना चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: और हम अगर पीछे जाकर के देखें 10,000 साल पहले जो वैदिक परंपराएं होती थी, सब कुछ विज्ञान के आधारभूत वो चला करती थी.
0: जी.
1: लेकिन हमने अध्यात्म को और संस्कारों को तो लिया, बट उसके पीछे का विज्ञान भूल गए. तो ये बड़ा अच्छा फोरम है जहाँ पर इसकी जानकारी हमको मिलेगी. तो हम तो अब खुद सीखे हैं, लेकिन अगली हम चाहते हैं कि हमारी अगली आने वाली
0: भी
1: इन चीजों को भी माने, समझे और सोचे और इन पे क्वेश्चन भी करे और हम उसका आंसर दें. तो ये बहुत ही अच्छा इवेंट है. आपको इन तरह की विषयों पे चर्चा करने का मौका मिलेगा. हमारे वॉलंटियर्स होंगे और गायत्री परिवार इसी चीज को आगे बढ़ाता है. और हम यहाँ पर संत हमारे पास 3 दिन रहेंगे. अगर किसी को अपने घर में इनवाइट करना है तो 15-20 मिनट के लिए हम उनके लिए प्रबंध कर सकते हैं. तो इसी नंबर पे आप फोन कर सकते हैं जो मैंने बताया 9082512799. और हमारी वेबसाइट पे सारी जानकारी है. अगर संत को आप बुलाना चाहें, उनसे कुछ और सुनना चाहें, तो यू कैन डेफिनेटली कम फॉरवर्ड.
0: परफेक्ट. सो इट इज awjpdfw.org. वहां पर आप जाकर बहुत सारी और भी आपकी गतिविधियां होती है जयप्रकाश भाई. नॉट ओनली फॉर दिस इवेंट, यू गैस डू अ वंडरफुल जॉब. आई नो यू ऑल्सो हैव अ बाल संस्कार जो एक बच्चों के लिए भी आप तैयार कर रहे हैं, अगली पीढ़ी को, अगली जनरेशन को. वो भी एक बहुत ही कमेंडेबल काम है. एंड यू ऑल्सो हैव जूम में भी आपके बहुत सारे गायत्री अनुष्ठान होते हैं नवरात्र के दौरान. सो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप डालस फुटपथ में अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से.
1: जी,
0: थैंक यू सो मच जयप्रकाश भाई. एनीथिंग एल्स सर वुड यू लाइक टू एंड इन द एंड?
1: नहीं, आपने जो कहा उस पर मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे पूरे 16 संस्कार करवाते हैं और हमारे जो संस्कारों की परंपरा है वो फ्री ऑफ चार्ज है. हम किसी से एक पैसा भी नहीं लेते हैं. अगर आपको कुछ डोनेशन देना होता है तो भगवान के चरणों में जाता है, माता गायत्री के चरणों में जाता है. जन्म से लेके इवन जन्म के पहले जो पुंसवन संस्कार, गर्भधारण संस्कार होता है, वहां से लेकर सत्यनारायण कथा, वास्तु पूजन से लेके मृत्यु संस्कार तक हम लोग कराते हैं विदाउट चार्जिंग एनीथिंग.
0: वंडरफुल.
1: तो ये और हम लोग बाल संस्कारशाला चलाते हैं विदाउट चार्जिंग एनीथिंग. हमारे 25-30 वॉलंटियर्स हैं जो सेल्फलेस सर्विस देते हैं, समाज के लिए देते हैं, कम्युनिटी के लिए देते हैं. यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको संस्कारित करने के लिए अपना समय और सब कुछ देते हैं. तो ये बिल्कुल गायत्री परिवार की फ्री बहुत सारे कार्यक्रम हैं. आप बिल्कुल वेबसाइट पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं.
0: वंडरफुल, वंडरफुल. AWGP, दैट इज अखिल विश्व गायत्री परिवार, tfw.org. बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश भाई आपका वक्त निकालने के लिए और यहाँ पर आकर हमारी पूरी कम्युनिटी को इस बहुत ही अद्भुत घटना की जानकारी देने के लिए. थैंक यू सो मच सर.
1: थैंक यू सो मच नीलम जी. थैंक यू टू ऑल फनेशिया लिसनर्स. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी लॉट ऑफ यू देयर इन द इवेंट.
0: जय गुरुदेव. थैंक यू सो मच सर.
1: जय गुरुदेव.
0: और एक बार फिर से सुन रहे हैं आप मुझे यानी कि नीलम को इस कार्यक्रम में जो है आप ही की सेवा में हर शनिवार की दोपहर 104.9 FM फनेशिया रेडियो पे लाती हूँ मैं नीलम ये कार्यक्रम. अगर आप भी किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप चाहे नॉन प्रॉफिट संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी मंदिर से, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कोई भी आपकी धार्मिक संस्था हो, कोई भी आपकी सामाजिक संस्था हो जो एक प्रयास में है कम्युनिटी की मदद करने के लिए, प्रयास में है समाज की मदद करने के लिए, तो वेल दिस इज योर प्लेटफॉर्म एवरी वीकेंड जहाँ पर हमारा प्रयास होता है कि जितने भी इवेंट, जितने भी एक्टिविटीज, जितनी भी जानकारी हम आपको देते हैं वो सारी होती है फ्री ऑफ चार्ज. जी हाँ, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज. वी ट्राई टू प्रमोट ऑल दिस इवेंट्स ड्यूरिंग दिस आवर ब्रॉट टू यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर. अगर आप किसी संस्था से जुड़े हुए नहीं भी है, इंडिविजुअली यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू हेल्प एनी स्टूडेंट. आप किसी स्टूडेंट की मदद कर रहे हैं, किसी परिवार की मेडिकल इमरजेंसी में मदद कर रहे हैं, किसी गो फंड में आप अपील भेज रहे हैं, तो ये सारी बातें भी इस माध्यम के दौरान, इस माध्यम के जरिए हम आपकी मदद कर सकते हैं. वंस अगेन, इस माध्यम के लिए प्लीज रीच आउट टू मी नीलम एट फनेशिया डॉट नेट. दैट इज NEELAM@phoneasia.net. हम बिल्कुल आपके जो भी कैंपेन है, आपके जो भी माध्यम है, आपका जो भी कार्य है जो समाज के लिए आप करना चाहते हैं, उसकी हम मदद करेंगे. क्योंकि दिस इज फनेशिया रेडियो, कम्युनिटी आउटरीच की ही ये प्रस्तुति कम्युनिटी राउंड अप. और हमारे बिल्कुल फेसबुक पर भी सोशल मीडिया पेज है कम्युनिटी आउटरीच का, फेसबुक फनेशा रेडियो पेज पे फनेशा कम्युनिटी आउटरीच, उसको भी आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारे कम्युनिटी कैलेंडर्स की इवेंट्स की जानकारी मिलती रहे। हमारी यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर आपको बहुत सारे इंस्पिरेशनल एंड स्पिरिचुअल, उसी के साथ सेलिब्रिटी की अगर इंटरव्यूज हो या कोई भी इंटरव्यू हो विच आर वेरी इंस्पिरेशनल बातें, ये सारी बातें आपको सुनने मिलती है। एंड द यूट्यूब चैनल इज फनेशिया कम्युनिटी आउटरीच नीलम दवे। इसी बात के साथ मैं नीलम लेती हूँ आप सभी से आज्ञा अनुमति, अब मुलाकात होगी इस सेगमेंट में अगले शनिवार 2 बजे तक का। और अगर आप मेरे और सेगमेंट सुनना चाहे, इट इज संडेज 12 से 2 के बीच में कल और सैटरडेज 12 से 3 के बीच में, एक बार फिर से ऑन 104.9 FM।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: जीनी
4: हुकम मेरी आका,
3: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
4: मिराज लाउंज, चलिए मेरी आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
3: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
4: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
3: और एंटरटेनमेंट,
4: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
3: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
4: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रैंच पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
6: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
6: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
8: आने वाले खाने में डोसा।
0: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
9: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
0: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
0: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands की life बदली उनकी divine guidance से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और visit astrologerishwar.com.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
0: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
12: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
0: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड। रोते काय को हम।

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hai. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye. HEB ke naye DFW stores. Mid-Cities, Irving aur मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB Here everything is better.
3: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
4: अरे वो केक आया क्या?
5: डीजे कौन हैंडल करेगा?
6: रिकॉर्ड वाले को कॉल किया?
5: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया।
7: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया?
5: ऑसम इवेंट्स?
7: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड द टीम विल हैंडल एवरीथिंग।
8: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म।
7: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ।
9: कॉल नाउ एट 214-725-7466 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
10: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
11: Shakti, Sanskriti aur Samarpan ki ek yaadgar sham aapka intezaar kar rahi hai. Is Saturday, 11 July, sham 7 se 9 baje, apne poore parivar ke saath aaiye Krishna Heritage Center Shankhasthapna Mahotsav mein. Ek bhavya 11-acre campus ki shuruaat ka jashn manaiye, jahan banega Krishna Temple, Goshala, Free School, Events Hall aur Restaurant. Sham ko aur bhi khas banayenge. Gopu नरसिम्हा यज्ञ चैंटिंग, किड्स मेला, भजन क्लबिंग और सबके लिए फ्री डिनर फीस्ट. माइनस पार्क ऑपोजिट कृष्णा हेरिटेज सेंटर, 7082 कंट्री रोड.
12: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 469-734-3338. Powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender. We're young.

खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनेशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में इट इज 38 मिनट्स पास्ट 3. Today is the 11th of July, 2026. Yes, once again, a lovely Saturday afternoon. I know garmi ko dekh kar to aap lovely nahi feel kar rahe honge, but I am sure ke jab aap sunenge kuch surile geet yahan on our segment Boli Pyar Ki, you are going to definitely feel much better. आज के सेगमेंट को शुरू करते हैं एक तमिल लव सॉन्ग से. आई होप यू गोना लाइक इट. एज यू नो, बोली प्यार की सेगमेंट में हम हिंदी, उर्दू और इंग्लिश के गाने नहीं प्ले करते, बल्कि प्ले करते हैं सिर्फ आपकी पसंद के रीजनल लैंग्वेजेस के गाने. हर लैंग्वेज के सिर्फ दो ही गाने प्ले किए जाते हैं. सो पहले आइए पहले पाइए. एज इन इफ फर्स्ट टू कॉल विल ऑलवेज गेट टू हियर देयर request first. 972-235-5555 है हमारे स्टूडियो का नंबर.

0: प्रेमम मलारे सुन रहे थे आप ये तमिल सॉन्ग. होप यू गाइस एंजॉयड इट. आवर फोन लाइंस आर ओपन फॉर योर रिक्वेस्ट फॉर रीजनल लैंग्वेज सॉन्ग्स. शुरुआत की तमिल गाने से, अब आगे देखते हैं क्या होगा, कौन कौन सी लैंग्वेजेस के गाने आज सुनने को मिलेंगे. आई डू वॉन्ट टू मैंशन कि यूजली हमारे सेगमेंट में 5 से 10 मिनट का होल टाइम होता है. सो प्लीज धीरज धरिए, बी पेशेंट. योर सॉन्ग विल बी प्लेड इन द ऑर्डर योर कॉल केम इन. फनीशा रेडियो, थैंक यू फॉर होल्डिंग. आपका नाम?
1: हेलो.
0: हेलो जी, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: यस जी, अमरीन जी. हाउ आर यू? सोहेल एंड मरियम.
0: गुड. हाय. आई एम डूइंग वेल. सो व्हिच बांग्ला सॉन्ग डिड यू वांट टू रिक्वेस्ट टुडे?
1: एब्सोल्युटली. वन सेकंड मरियम.
2: Hi, Amrin. How are you?
0: I'm good. How are you, Mariam? Tell me, which song?
2: Bojhe Na She Bojhe Na.
0: Bojhe Na She Bojhe Na. Okay, and I hope ki bojha cheshta korche na ki apni beshi cheshta kore nei.
2: Na, beshi cheshta kore nei.
0: Okay, no problem. Well, here is your Bangla song. And where are you? Which town are you calling us from?
2: Richardson.
0: Richardson. All right. Thank you. Stay safe. Enjoy.

0: बोझे ना शे बोझे ना, हम सुन रहे थे ये गाना सुहेल और मरियम की फरमाइश पर। दिस वाज अ बांग्ला सॉन्ग। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: हेलो।
0: हेलो जी, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: माय नेम इज अब्दुल।
0: जी अब्दुल, व्हिच सॉन्ग, व्हिच लैंग्वेज सॉन्ग वुड यू लाइक टू रिक्वेस्ट?
1: It's gonna be Farsi, Afghanistan song.
0: Farsi, all right. And what's the name of the song?
1: Akhir.
0: Akhir?
1: Yeah, Ghizal Inayat.
0: I'm sorry, Inayat. Okay, let's see if I can find it. I will play it for you. Is it called? Is it called Akai? Is that the one?
1: Akhir, yes. Ghizal Inayat.
0: Okay. No, I don't think that is what it's called. It's something else. I hope you'll enjoy it, but it is a Farsi song, so here it is. Thank you.

0: सुन रहे थे हम अब्दुल साहब की रिक्वेस्ट पर ये फारसी सॉन्ग. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. वेल म्यूजिक लवर्स, आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड बिकॉज टुमारो वी हैव विशाल शेखर लाइव इन कॉन्सर्ट. योर प्लेलिस्ट इज गोइंग टू कम अलाइव. जी हाँ, द कर्टिस कोवल सेंटर इन गार्लैंड. द टिकट्स आर स्टिल अवेलेबल cashpatelproductions.com. इन फैक्ट इफ यू यूज द कोड फन एशिया यू गेट 30% डिस्काउंट. All right, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: शेप.
0: जी शेप, आप बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: बलोची
0: गाना. क्या नाम है आपके गाने का?
1: कनायारी.
0: ओके, आई विल प्ले दैट फॉर यू. और कौन सी सिटी से कॉल कर रहे हैं आप हमें?
1: Flower Mound se.
0: All right. Thank you so much. All right, folks. We played Tamil, Bangla, Farsi, aur ab ye raha hamara Balochi song.

0: That was Kana Yari, Shoaib Sahab ki farmaish par sun rahe the hum ye gana. Thank you so much for tuning into Dil Se on 104.9 FM. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. I'll be with you till 6 PM और ये है सेगमेंट बोली प्यार की, हमारी रीजनल लैंग्वेज रिक्वेस्ट सेगमेंट, जिसमें कि हम आपको उर्दू, इंग्लिश, हिंदी नहीं बल्कि बाकी सारी साउथ एशियन लैंग्वेजेस के गाने सुनवाते हैं बाय रिक्वेस्ट. 9722355555 हेड्स अप, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट का होल टाइम है फॉर योर रिक्वेस्ट टू बी प्लेड. बट वंस योर कॉल इज कनेक्टेड, दैट मीन्स आप कतार में हैं, यूर इन क्यू, योर कॉल विल बी आंसर्ड इन द ऑर्डर इट वॉज रिसीव्ड. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो,
1: हाय
0: जी, आपका नाम?
1: पार्थ
0: जी. पार्थ बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: उड़िया.
0: उड़िया सॉन्ग, ऑलराइट. क्या नाम है आपके गाने का?
1: जगारे, जे ए.
0: ओके, आई थिंक आई गॉट इट. ओके,
1: या सौरव भारद्वाज.
0: आई विल, सो इट्स लाइक अ रिलीजियस सॉन्ग मे बी?
1: या, इट्स कैन सी जगन्नाथ.
0: ओके, गॉटचा, आई विल प्ले इट फॉर यू. कहां से कॉल कर रहे हैं आप हमें पार्थ?
1: अर्विंग.
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच. ये रहा हमारा उड़िया सॉन्ग, एंजॉय.

0: पार्थ की रिक्वेस्ट पर सुन रहे थे हम ये उड़िया सॉन्ग. चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम? प्लीज स्पीक अप. हेलो
1: हेलो
0: जी जी
1: Hello?
0: आपका नाम बताइए जल्दी से. हेलो ओके, वी आर गोना गो अहेड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
2: हेलो
0: हेलो जी, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
2: जी मलिक.
0: जी मलिक साहब, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
2: ये पंजाबी रिक्वेस्ट करना चाह रहा था.
0: जी बताइए.
2: है रंजीत बावा. Okay. और जो है ये मिट्टी दा बाबा, ये एक एल्बम है और गाना जो है डॉलर वर्सेस रोटी.
0: वाओ ओके, डॉलर वर्सेस रोटी. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दैट सॉन्ग. ओके, आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी, सो आई गॉट लाइक लॉट गोइंग ऑन हियर. लेट मी सी. ओके, आई थिंक आई फाउंड इट. आपके लिए प्ले करते हैं. थैंक यू सो मच. कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें?
2: Phoenix, Arizona.
0: Thank you so much for your call. All right, guys, let's enjoy this first Punjabi song of the day, Boli Pyar Ki, brought to you in part by Tara Commercial Energy.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
7: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डालस चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, fir pooja ka saman, gifts bhi khareedne hain aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
12: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
13: Kahan? Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, pooja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
14: Foodistan in Aubrey. Everything they see. One place, one vibe.
15: Ye tara wo tara har tara.
16: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
17: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
18: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
19: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
18: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
19: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
18: सच में सब संभाल लेंगे?
19: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग,

0: Situation, you name it, they deliver. Venue, photography, hospitality, sab kuch ek hi jagah. Signature events ka decor aur khana by the renowned Basera Grand only.
1: Call Hari Basera on 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
2: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, एंड आई बी विथ यू टिल 6 PM. इट इज 4:05. और तारा कमर्शियल एनर्जी के बारे में हमने आपको बताया था, एंड दिस इज अ स्पेशल मैसेज फॉर ऑल द Texas business owners. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन हो, देन यू नीड टू गेट इन टच विद TaraEnergy.com. दे हैव कम्पेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स. प्लस दे बीन इन बिजनेस सिंस 2002. सो आज ही कॉल कीजिए 844-428-2808. बोली प्यार की सेगमेंट में आर वेट टाइम इज एनीवेयर फ्रॉम 5 to 10 minutes. सो प्लीज बी पेशेंट एंड बी मेंटली प्रिपेयर्ड. Fun Asia Radio, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो Fun Asia Radio, प्लीज स्पीक अप. हेलो Fun Asia Radio, प्लीज स्पीक अप. Okay, I'm going to have to disconnect unless someone speaks. Hello? 1, 2, 3. Okay, I apologize if you're not going to speak. I won't be able to keep you. Fun Asia Radio, aap on air hai, aapka naam?
3: Meenakshi.
2: Ji, Meenakshi, boliye. Kaunsi language ka gana request karengi?
3: It's a Nepali song.
2: Nepali song. Haan. And kya naam hai aapke gaane ka?
3: Yo Zindagi from Nepati. Yo Zindagani.
2: Yo Zindagani. But that word sounds Hindi. That's Nepali?
3: Yeah. Yes.
2: Okay. Yo Zindagani. Is that what it is?
3: Yeah, by Nepathe.
2: Okay, gotcha. I would play that. Or Meenakshi, aap kahan se call kar rahi hai humko?
3: Main Dallas se.
2: Dallas se. All right. Thank you so much. Enjoy your Nepali song.

0: यो जिंदगानी सुन रहे थे आप ये नेपाली सॉन्ग मीनाक्षी की रिक्वेस्ट पर. इट्स 10 minutes past 4 एंड दिस इज दिल से ऑन फन एशिया रेडियो. नाउ दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म इफ यू वुड लाइक टू प्रमोट योर बिजनेस. ऑल यू नीड टू डू इज कॉल अस हियर एट द स्टूडियो 972-235-5555 और यू कैन कॉल मी. आई'd बी हैप्पी टू हेल्प यू एज वेल. 214-725-7466. अगेन बोली प्यार की सेगमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस के गाने प्ले करते हैं बाय रिक्वेस्ट एंड देयर इज अ होल टाइम ऑफ 5 to 10 minutes मिनिमम. फन एशिया रेडियो आप ऑन एयर हैं. थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली होल्डिंग. आपका नाम? हेलो
1: जी, माय नेम इज प्रवीण.
0: जी प्रवीण, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: अगर आप कनाडा सॉन्ग चला सकती हैं.
0: एब्सोल्युटली. क्या नाम है आपके गाने का?
1: नकुआ नयना.
0: नकुआ, नकुआ नयना. ओके जी, नकुआ नयना. गॉटचा. आई विल प्ले दैट. उसमें अनिल कपूर है? हाँ, क्या बात है. आई डिडंट नो. अरे वाह, आई डिडंट नो दैट ही स्पोक. डज ही स्पीक कन्नड़ा या ऐसे ही उन्होंने बस मूवी में काम किया था?
1: Maybe this was a launch movie, but he had launched in Hindi, though he did it in Kannada.
0: I see. Awesome. All right. Well, thank you so much. Here's your song.

प्रवीण जी की रिक्वेस्ट पर सुन रहे थे हम ये गुजराती सॉन्ग. होप यू गाइस एंजॉयड इट. आई डू अप्रिशिएट योर लिसनरशिप एंड आई नो आई डू आई थिंक अ प्रीटी गुड जॉब ऑफ प्लेइंग सॉन्ग्स एज इन दैट इज माय जॉब हियर एट फनीशा रेडियो. लेकिन उसके अलावा आई हैव अ साइड गिग. आई एक्चुअली डू फुल एंड पार्शियल सर्विस इवेंट प्लानिंग. सो अगर आपको अपने इवेंट में किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, वेदर यू आर लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट या आपको पूरा फुल वेंडर मैनेजमेंट चाहिए कि कोई आपकी इवेंट वाले दिन सब लोगों को मैनेज करे, मेक श्योर करे कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स टू मेक श्योर कि बेस्ट वेंडर्स इन टाउन आपको मिले, यानी कि डेकोरेटर हो या केटरर हो या वेन्यू हो, जो कुछ भी, I can help you with that. In fact, agar aur kuch nahi, you just need someone to MC your event professionally, I would be more than happy and honored to be at your event. Aap mujhe directly call kar sakte hain 214-725-7466 and the name of my company is Awesome Events. Again, my name is Amreen Hasnat aur mera number hai 214-725-7466. Aaiye ab chalte hain is Malayalam love song ki taraf.

0: I don't know about you guys, but I really enjoyed this Malayalam love song. Very sweet. Okay, Janab, बहुत जल्द ही हम एक गिव अवे करेंगे फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट. सो ध्यान से सुनते रहिए ये सेगमेंट. वी कंप्लीटिंग वन आवर. वी स्टार्टेड अराउंड 3:35 PM. All right, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: My name is Jaspeer Clare.
0: जी सर, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: पंजाबी.
0: All right, क्या नाम है आपके पंजाबी सॉन्ग का?
1: रंजीत बाबा इज
0: सिंगर.
1: रंजीत बाबा इज तेरी वे ड्राइवर ट्रकों वाले अभी किसे जानती तनखा.
0: ओके, कुछ समझ में नहीं आया, आप इतनी स्पीड से बोल गए. पहले दो वर्ड्स क्या हैं गाने के?
1: तेरी वे ड्राइवर ट्रकों वाले अभी किसे जानती तनखा.
0: ओके,
1: रंजीत बाबा.
0: ओके, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट. और आप हमें कहां से कॉल कर रहे हैं?
1: मैं कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ. पहले डैलस में रहता था इधर ही.
0: ओके, नाइस.
1: हम ट्रेसी में रहते हैं इधर कैलिफोर्निया में.
0: अच्छा अच्छा, वेरी गुड. ऑलराइट, वेल ये रहा आपका पंजाबी सॉन्ग. एंजॉय.
1: थैंक यू.

0: All right, that was our second Punjabi song of today, and now time for a giveaway. San Idli Restaurant ki taraf se denge hum aapko aapki pasand ka dosa, saath mein milegi filter coffee. And San Idli Restaurant is located right off Custer and 121 in Frisco. It's 100% pure vegetarian restaurant. You'll get all kinds of authentic flavors, idlis, dosas, South Indian favorites, har tarah ke matlab. Aur खास बात ये जो इनकी फ्रेश कॉफी है ना उसकी तो बात ही क्या है. सो ये मिलेगा आपको इनाम में इफ यू गिव मी द करेक्ट आंसर. मैंने ये सेगमेंट शुरू किया 3:35 पे. सो आप समझ लें कि अब तक एक घंटा तकरीबन हुआ, राइट? बीच में एड ब्रेक भी थी. अब आप ये बताइए कि हमने टोटल कितनी लैंग्वेजेस में गाने आपको सुनवाए. एक हिंट दे दूं कि दो लैंग्वेजेस के हमने दो दो गाने प्ले किए थे. ऑलराइट, सो दैट्स पंजाबी एंड नेपाली. अब आपने मुझे टोटल काउंट बताना है कि कितनी लैंग्वेजेस के गाने पिछले एक घंटे में हमने आपको सुनवाए. द फर्स्ट पर्सन टू गिव मी द करेक्ट आंसर विल विन the dosa as well as filter, and I'll also give a prize to the second correct caller. So matlab agar second jo bhi hoga jisne sahi jawab diya, and I will not announce it till I have received both the correct answers. So once again, is pichle ek ghante mein humne kitni languages ke gaane aapko sunwaye hain. 972-235-5555. You can call multiple times. 972-235-5555. Tell me how many languages songs we played so far.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Aaja meri gaadi mein baith ja.
5: Baith jaau? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
6: Wo thoda overheating tha.
5: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
8: इन प्लेनो.
7: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी.
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
11: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरो हूं.
13: बेटा 95% आए?
14: हाँ मम्मी.
13: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
15: मेरा?
13: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
15: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
16: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
17: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
16: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
17: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
18: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
8: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
14: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स मे वेरी.
3: द टेक्सास सुपर किंग्स आर हियर एंड द एक्शन इज एब्सोल्युटली हीटिंग अप. डोंट मिस अ सिंगल थ्रिलिंग मोमेंट. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
15: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
3: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
0: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनेशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. सो मैंने सवाल पूछा था कमर्शियल ब्रेक से पहले कि पिछले एक घंटे में, तकरीबन एक घंटा, आई मीन आज से 50-55 मिनट्स में हमने कितने गाने प्ले किए हैं. और मैंने एक क्लू दिया था कि दो लैंग्वेजेस के हम दो दो गाने प्ले कर चुके हैं. सो आई डिड गेट टू कॉलर्स हु गेव मी द करेक्ट आंसर. इन फैक्ट वन ऑफ देम इज ऑन होल्ड राइट नाउ क्योंकि एक्चुअली उन्हें गाना सुनना था तो वो ऑलरेडी होल्ड पे थे. सो जब मैंने उनकी कॉल रिसीव की, इट्स सो फनी दैट ही वाज लाइक द फर्स्ट कॉलर एंड ही गेव लाइक द एक्यूरेट आंसर. मैं बहुत सरप्राइज थी. मैंने कहा आप बैठ के क्या गिन रहे थे पिछले एक घंटे से. सो बेसिकली हमने प्ले किए आपके लिए टोटल 11 सॉन्ग्स वर प्लेड एंड 9 लैंग्वेजेस वर फीचर्ड. सो देयर वर 9 लैंग्वेजेस बट 11 सॉन्ग्स वर प्लेड एंड यस दैट वाज अ करेक्ट आंसर. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कमलेश एज वेल एज राम. आप दोनों ने जीता है ये इनाम फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट इन फ्रिस्को. यू गेट डोसा एज वेल एज फिल्टर कॉफी एंड प्लीज यू नो गिव इट 24-48 आवर्स तब आप अपने आईडी के साथ रेस्टोरेंट में जाइएगा और यू नो जस्ट क्लेम योर प्राइस. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आई एम अस्यूमिंग दैट्स कमलेश, राइट?
19: Yes. So that's
0: hello, Kamlesh. Hello, congratulations. Me. How are you doing?
19: Thank you. Good. How about you?
0: I am doing great. अच्छा, आप बताइए कौन सी भाषा का आप गाना सुनेंगे?
19: इस बार मैं मराठी गाना सुनूंगा और गाने के बोल है तुला काय सांगू from the movie जयंती.
0: तुला काय
19: सांगू. SANGHU.
0: सांगू. All right. Let's see if I can find that song. I think I did. All right, play करते हैं हम आपके लिए. और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं सर हमें?
19: जी, फ्लावर माउंट से.
0: फ्लावर माउंट से. All right, thank you and once again congratulations on your prize. All right, sure, thank you.

0: That's a very sweet Marathi song. Kamlesh sahab ki farmaish par sun rahe the hum. We are still taking requests for regional songs. Ladies and gentlemen, if you've just tuned in, ye hai segment Boli Pyar Ki, जिसमें कि हम आपको रीजनल लैंग्वेजेस के गाने सुनवाते हैं बाय रिक्वेस्ट. 9722355555 है हमारे स्टूडियो का नंबर. फनीशर रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: हेलो.
0: हेलो जी, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: भरत.
0: भरत बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: सिंधी.
0: सिंधी गाना. क्या नाम है आपके गाने का?
1: दमा दमा सिकंदर.
0: ये बहुत सारे लोगों ने गाया है, तो कोई स्पेसिफिक?
1: मीका सिंह एंड हनी सिंह.
0: आई विल प्ले दैट फॉर यू. और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें?
1: प्लेनो.
0: प्लेनो से. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. आइए सुनते हैं हम ये गाना दमा दम मस्त कलंदर. इंजॉय.

0: दमा दम मस्त कलंदर, होप यू गाइस एंजॉय दैट सिंधी सॉन्ग. मूविंग ऑन, फनीशो रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम? हेलो
1: आदित्य.
0: जी आदित्य, बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: हिंदी.
0: वी आर नॉट डूइंग हिंदी सॉन्ग्स राइट नाउ. दिस इज बोली प्यार की सेगमेंट, जिसमें वी आर डूइंग रीजनल लैंग्वेजेस.
2: Punjabi.
0: We've already played two Punjabi songs, so sorry, any other language. So why don't you guys think about it, and you are welcome to call us back. Thank you. Fanisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
3: Hello, ji, assalamu alaikum. Ji, mera naam Aga hai.
0: Waalaikum assalam. Kya naam bataya aapne? Aga?
3: Ji. Amar, aap kaise ho? Theek thaak ho? Good to hear you.
0: Thank you so much. Aap bataiye, kaun si language ka gana request karengi?
3: जी मुझे सिंधी गाना सुनना है. एड़ो बुदाए सजन छोटो बनी.
0: ओके, आपने काफी फास्ट बोला, मेरे ऊपर से गुजर गया. अभी आहिस्ता आहिस्ता फिर से बोलिए. आई विल ट्राई टू फाइंड योर सॉन्ग.
3: ओके, आई वांट अ सॉन्ग फॉर एड़ो सजन छोटो बनी, दाढ़ो तो बनी.
0: एड़ो सजन, ओके, लेट्स सी इफ आई कैन. आई फाउंड एड़ो सजन मोके छो थोवानी, दैट वन.
3: Yes.
0: Okay, ठीक है. I will play that for you. Thank you for your call. And here is our second Sindhi song. अच्छा, और ये जो मैं आप लोगों को numbers इसलिए बताती हूँ, because हर language के हम सिर्फ दो ही गाने play करते हैं, right? So अब दो Sindhi गाने हो गए हैं. Let me give you a recap of all the languages that we played so far. Tamil, Bangla, Farsi, Balochi, Punjabi, Nepali, Kannada, Gujarati, Malayalam, Marathi and Sindhi. तीन लैंग्वेजेस के दो दो गाने हो गए हैं, यानी कि अब उनकी रिक्वेस्ट हम नहीं लेंगे, विच इज पंजाबी, नेपाली एज वेल एज सिंधी, बिकॉज दिस इज आवर सेकंड सिंधी सॉन्ग.

0: रियली नाइस सॉन्ग, एक्चुअली एंजॉयड द बीट. आपने नोट किया हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस के गाने सुन रहे हैं और कुछ जो लैंग्वेजेस हैं उनकी अपनी एक ताल, अपनी एक रिदम होती है विच इज वेरी यूनिक टू दैट लैंग्वेज एंड दैट स्टाइल ऑफ म्यूजिक एंड इट्स रियली नाइस एंड आई एम सो ग्लैड कि बोली प्यार की सेगमेंट के जरिए हम इन तमाम डिफरेंट लैंग्वेजेस और उनके डिफरेंट म्यूजिक स्टाइल्स को इंजॉय कर पाते हैं. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो
1: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: हसी बोला
0: जी, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: ये एक अरबी सॉन्ग.
0: अरबिक सॉन्ग, ऑल राइट. क्या नाम है गाने का?
1: आम्रदी.
0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बताइए सॉन्ग का नाम क्या है?
1: एक अफगानिस्तान रख दो.
0: Afghani song. Yeah. All right. I'll play an Afghani song for you.
1: Afghani Jalebi.
0: Oh, well, that's actually more of a Hindi song, so we can do the Afghani Jalebi. I will find a nice Afghani song for you. All right. Thank you so much for your call. So, chaliye, dhoondte hain koi achha sa Afghani song. You know what? This might be a good one. Enjoy.

0: लवली सॉन्ग सोनू निगम की आवाज में सुन रहे थे आप ये सेकंड कन्नडा सॉन्ग. नाउ द थिंग इज वी आर एट अ टाइम एंड आई हैव अ बंच ऑफ पीपल कॉलिंग एंड ऑन होल्ड. सो अब जो सबसे ज्यादा देर से इंतजार कर रहे हैं ऑब्वियसली दैट पर्सन इज गोना बी आवर फाइनल लास्ट कॉलर. सो माय अपोलॉजीज टू द रेस्ट ऑफ द पीपल हु हैव बीन होल्डिंग. लेकिन यू नो लाइक आई सेड द कॉल इज आंसर्ड इन द ऑर्डर इट वाज रिसीव्ड. फनीशा रेडियो पे आप हमारे इस सेगमेंट के फाइनल कॉलर हैं. आपका नाम?
1: हेलो, मेरा नाम पूजा.
0: जी पूजा, यू आर लास्ट कॉलर फॉर टुडे. बताइए क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम पूजा है.
0: हाँ पूजा, सॉरी. बताइए कौन सी लैंग्वेज का गाना? देखिए मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं थोड़ी सेंटी हो गई हूँ क्योंकि आप लास्ट कॉलर हैं. अच्छा बताइए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: मारवाड़ी.
0: मारवाड़ी, ओके. और क्या नाम है आपके गाने का?
1: लुक छुपना जाओ जी, मैंने डेट कराओ जी.
0: लुक छुपना जाओ जी, ओके. आई विल फाइंड इट, आई विल प्ले इट फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड हियर इज आवर लास्ट सॉन्ग ऑफ द evening of the segment Boli Pyar Ki.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
3: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
4: Tarikh par tarikh.
5: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
3: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
6: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
7: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future. We got

स्पेशल 26 का ये गाना सुन रहे थे आप, जो कि अक्षय कुमार और काजल अग्रवाल पर पिक्चराइज किया गया था। अगर अभी अभी आपने ट्यून इन किया है तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से, और इसे पेश कर रही हूँ मैं बहुत दिल से, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, एंड आई विल बी विथ यू टिल 6 PM, इट्स 12 मिनट्स पास्ट 5, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग।

0: कैसी लग रही?
1: मेरी लग रही है। तेरा वो झुमका गुम गया था ना, मिला?
0: तूने चुराया था वापस?
1: वापस क्यों लूंगा? अब तेरा एक कान हमेशा मेरे पास रहेगा। जहां तूने मेरे साथ बकवास की, तेरा कान पकड़ के जो मरोड़ूंगा ना मैं।
0: अच्छा ऐसे?
1: चांद क्या कर रही है मंदिर में?
0: क्या
1: बिहेव है उसका?

0: सर, इसके पढ़ाने से ही हम लोग पास हुए हैं। गारंटी ले रहा मैं, आपके इंस्टीट्यूट के सारे स्टूडेंट्स टॉप कर देंगे। सच बता रहा मैं।
1: क्या रे बैंगन, मुंह कहीं को लटका है यारो? हैं? जॉब तो मिल गई ना तुम्हारे को?
2: सिर्फ खर्चा निकलेगा उससे महीने का, रेंट कौन भरेगा? कुछ और ढूंढना ही पड़ेगा मुझे।
1: ब्रो, पढ़ाई कब करेगा? हैं? अच्छा सुन, मेरे मामा का घर है कॉलेज के पास, दिलाता हूँ तेरे को घर।
0: अरे टेंशन नको यारो, वेन चिन्ना इज हियर। क्या बोल रहा, समझ रहा?

चांद मेरा दिल टाइटल ट्रैक सुन रहे थे आप, जो कि लक्ष्य और अनन्या पर पिक्चराइज किया गया था। दिस पार्ट ऑफ आवर शो ब्रॉट टू यू बाय माय टाइम इक्विटी। इफ यू नीड फाइनेंशियल गाइडेंस, माय टाइम इक्विटी लेड बाय सीपीए सुधीर पाय ऑफर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। विजिट mytimeequity.com और कॉल 4697021272। And with that, we're going to move on to our next beautiful song. कोई खास गाना अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 972-235-5555।

What a beautiful song, हाँ के हाँ, महाराज फिल्म से लिया गया ये गाना मोनाली ठाकुर की आवाज में सुन रहे थे आप. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से ऑन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो. टुडे इज द 11th ऑफ जुलाई 2026. आई होप कि सो फार आपका सैटरडे बहुत अच्छा गुजर रहा है. इफ नॉट, वेल मे बी देयर इज अ सॉन्ग वी कैन प्ले फॉर यू. कॉल मी 972-235-5555. नाउ दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी ओमार ख्वाजा. वैसे तो हम ये चाहेंगे कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर आप कहीं स्लिप करके गिर जाते हैं या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता, Attorney Omar Khwaja will fight your case and he can help you get the compensation that you deserve. Kyunki jaise ki aap sabhi jante hain, insurance company se deal karna kafi stressful ho jata hai. So give them a call and they will make sure that you're compensated. 469-300-5046. Aur unki fees ki chinta aap na kare, kyunki jab tak aap win nahi karte, aapne unhe kuch pay nahi karna. Free consultation hai. Visit kijiye attorneyomar.com.

रंग शरबतों का अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना जो शाहिद कपूर पे पिक्चराइज किया गया था फ्रॉम द फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो। और अब चलते हैं अगले गाने की तरफ। आई पिक्ड समथिंग फ्रॉम द डेज गॉन बाय। आई थिंक यू आर गोना एंजॉय दिस वन। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस वी हर्ड दिस सॉन्ग।

उदित नारायण, अलका याग्निक और वसुंधरा दास की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना ओरी छोरी फ्रॉम द फिल्म लगान। याद है ना आपको, आई थिंक 2001 की ये सुपर हिट फिल्म थी। आइए अब चलते हैं अगले गाने की तरफ। नाउ दिस हैपेंस टू बी ए रिक्वेस्ट टेकन फ्रॉम द फिल्म मर्डर 2। एंजॉय। एंड आई थिंक उन्होंने अपना नाम पुष्कर बताया। Here you go, Pushkar. This one's yours.

0: Mortgage, 972-245-5626, or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
1: Vegan ka plan, abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye, to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezaar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement. Sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
2: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
1: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
3: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
4: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897. Or visit astrologerishwar.com.
5: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
6: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
7: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
6: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
8: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At ShopCompareInsure.com, we're not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship and access to top-rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
7: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
9: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
9: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
11: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe.
12: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
13: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

0: हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641।
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
5: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025228। Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
1: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Shakti, Sanskriti aur Samarpan ki ek yaadgar sham aapka intezar kar rahi hai. Is Saturday, 11 July, sham 7 se 9 baje, apne poore parivar ke saath aaiye Krishna Heritage Center Shankhasthapna Mahotsav mein. Ek bhavya 11-acre campus ki shuruaat ka jashn manaiye, jahan banega Krishna Temple, Goshala, Free School, Events Hall aur Restaurant. Sham ko aur bhi khas banayenge. Go Puja, Narsimha Yagna Chanting, Kids Meet, भजन क्लबिंग और सब के लिए फ्री डिनर फीस्ट। माइनस पार्क ऑपोजिट कृष्णा हेरिटेज सेंटर, 7082 कंट्री रोड।